0: और झुमका।
1: ऑफिस में आपने अपनी कॉलीग की चेयर जानबूझ के सीटिंग बदल दी सो दैट शी कैन सिट नेक्स्ट टू यू, सो दैट आप सारा दिन उसे ताड़ते रहो। ऐसी गंदी हरकतें करते हो, आपको शर्म तो नहीं आती होगी? और आती है, एंड यू नीड रोशिफिकेशन फॉर इट। यू कैन हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB। मेरा नाम है मिर्ची रोशी। काम है आपसे प्यार करना। नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। एंड यू नो इट्स टाइम फॉर
0: द सीक्रेट बॉक्स।
1: सो अपना नंबर भेज दो, अपनी सीक्रेट कन्फेशन भेज दो, एंड आई प्रॉमिस मुझे आपको देने के लिए है नॉन जजमेंटल कान मेरी जान एंड ऑफ कोर्स अ होल लॉट ऑफ रोशिफिकेशन। मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर। हेलो मिस्ट्री कॉलर।
2: हाय रोशी,
1: कैसे हो आप?
2: मैं बहुत बढ़िया।
1: ये जो आप इतने स्वीट बॉय साउंड कर रहे हो ना, आपका इंस्टा कन्फेशन पढ़ के मुझे ऑब्वियस समझ में आ गया कि आप इतने स्वीट बॉय हो नहीं वैसे, है ना? मतलब यू हैव लाइक अ सर्टेन डिग्री ऑफ खुराफात अबाउट यू, करेक्ट, राइट और रॉन्ग?
2: या एग्जैक्टली।
1: क्या कर रहा है जिंदगी में
2: अभी? ना मैं बहुत सारी मतलब चीजें इधर उधर सीख रहा था।
1: हाँ।
2: तो मैंने

0: वो हमेशा मतलब मेरे से हमेशा जो मेरी बंदी है ना ये नहीं हो पाता वो नहीं हो पाता, हालांकि ऐसे टेंटम्स नहीं होते थे उसके, लेकिन आप समझ रहे हो ना मेरी जिंदगी बिल्कुल बेजान थी, सूखी पड़ी थी।
1: पर आपके पास तो गर्लफ्रेंड है तो सूखी क्यों पड़ी थी आपकी जिंदगी?
0: नहीं उसने भी वो तो है ना अपने से प्रॉमिस कर रखा था कि शादी के बाद ही सब कुछ करेंगे।
1: ओ मानो दोस्त, अच्छा ठीक है।
0: 5 साल क्योंकि पहले तो मैं कंधा रहा उसका, ठीक
1: हाँ।
0: है हाँ। तो कंधा बन के मैंने उसका बहुत साथ दिया, बहुत ये सब किया, उसके बाद जाकर वो आई तो उसने एक ऐसा अपने से प्रॉमिस कर लिया था कि नहीं यार हमें ना नहीं करना शादी से पहले। तो आपको पता है ना जब लड़के बैठते हैं, आप लोग भी जब बैठते होंगे, लड़कियां भी बैठती होंगी, तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तो मेरे जो बेस्ट फ्रेंड था ना उसे सब कुछ मिल रहा था, तो मैंने कहा भाई कैसे? तो कहता है यार नीड्स पूरी करनी पड़ती हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा मैं यहाँ पर दूसरे रूम में हूँ, मेरे माँ बाप बाहर बैठे हैं, तो मैं बहुत धीरे धीरे बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? तो भाई मतलब इतने डोमिनेटिंग पेरेंट्स के साथ तुम कहाँ से पैसा खर्च करोगे सारा? तो उसे एक बैग चाहिए था, ठीक। तो मैंने जुगाड़ लगाया और मैंने ना उसे सेकंड कॉपी लाकर दे दी उस चीज की, और उसे लग रहा है कि मैंने उसे बहुत महंगा वाला जो उसे पसंद था वो वाला बैग दिया।
1: तो आपने ओरिजिनल नहीं लेके दिया, फेक बैग लेके दिया उसको, और आप कह रहे हैं कि ओरिजिनल है।
0: पर रोशि मुझे रियल मिलने लग गया, फेक बैग के साथ रियल मिलना, सारे उसके व्रत पर सारे उसके प्रॉमिसेस टूट चुके हैं अपने से, और मैं बता रहा हूँ वीक में 2 से 3 बार मिल रहा है हम लोगों को।
1: मुझे ना इतने डिटेल्स चाहिए नहीं थे, मतलब मैं पहली बार में ही समझ गई थी कि खुश हो गए हो आप यार, मतलब और क्या डिटेल्स दोगे। मुझे नहीं लगता कि मेरे रोशिफिकेशन की कोई वैल्यू आपके यूनिवर्स में है ना, बिकॉज अभी तो आपके साथ जो मजे हो रहे हैं उसमें रोशिफिकेशन की क्या ही जगह है, बट फिर भी कर दूं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: मतलब जो आ रहा है आने दो, व्हाटएवर इज कमिंग,
0: कुछ रोकना नहीं है। बहुत दिनों बाद यहाँ पर हरियाली वापस आई।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो यार, यू हैव बीन रोशिफाइड। It was very nice talking to you, mystery caller. यार इन mystery caller से मैं और बात नहीं कर सकती, नहीं तो मुझे 2 मिनट में अपनी favorite position भी बता देंगे। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है, feel free to hit me up Insta पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, I also get entertained on the side, so hit me up, do whatever you have to do, पर कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

नॉट लाइंग, ये मैंने इंस्टाग्राम पर पढ़ा था, बट आई थिंक इट अप्लाइज टू यू एंड आई बोथ. पांच रीजंस कि आप एक मोमो हो. सबसे पहले, यू हाइड योर फीलिंग्स फ्रॉम एवरीवन. नंबर टू, आप प्रिटेंड करते हो दैट यू आर टफ ऑन द आउटसाइड लेकिन अंदर से यू आर सच अ सॉफ्टी. नंबर तीन, यू हैव मल्टीपल पर्सनैलिटीज. नंबर फोर, आप स्टीमिंग हॉट इंसान हो. एंड नंबर फाइव, एवरीबडी लव्स यू. आई हैव रियलाइज दैट एक्चुअली मैं इंसान कम और मोमो ज्यादा हूँ. अगर आपको भी ऐसा ही लगता है दैट यू आर अ बिट ऑफ अ मोमो, देन व्हाई डोंट यू गेट योर मोमो हियर एंड वी कैन हैव अ मोमो टू मोमो कॉन्वर्सेशन. और वो करने के लिए यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. और अगर आपने मोमो वर्ड करेक्टली नहीं सुना देन यू आर ऑल्सो अ लिटिल बिट पर्वी. ऑन दैट नोट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

Dani, Dani, Dani, Dani.

0: ऑफिस में आपने अपनी कॉलीग की चेयर जानबूझ के सीटिंग बदल दी सो दैट शी कैन सिट नेक्स्ट टू यू, सो दैट आप सारा दिन उसे ताड़ते रहो. ऐसी गंदी हरकतें करते हो, आपको शर्म तो नहीं आती होगी? और आती है, एंड यू नीड रोशिफिकेशन फॉर इट. यू कैन हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. काम है आपसे प्यार करना. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड यू नो इट्स टाइम फॉर
1: द सीक्रेट बॉक्स.
0: सो अपना नंबर भेज दो, अपनी सीक्रेट कन्फेशन भेज दो, एंड आई प्रॉमिस मुझे आपको देने के लिए है नॉन जजमेंटल कान मेरी जान एंड ऑफ कोर्स अ होल लॉट ऑफ रोशिफिकेशन. मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
2: हाय रोशी,
0: कैसे हो आप?
2: मैं बहुत बढ़िया.
0: ये जो आप इतने स्वीट बॉय साउंड कर रहे हो ना, आपका इंस्टा कन्फेशन पढ़ के मुझे ऑब्वियस समझ में आ गया कि आप इतने स्वीट बॉय हो नहीं वैसे, है ना? मतलब यू हैव लाइक अ सर्टेन डिग्री ऑफ खुराफात अबाउट यू, करेक्ट? राइट और रॉन्ग?
2: या एग्जैक्टली.
0: क्या कर रहा है जिंदगी में
2: अभी? ना मैं बहुत सारी मतलब चीजें इधर उधर सीख रहा था. हाँ. तो मैंने गर्लफ्रेंड को ना खुश रखने का वो देखा.
0: हाँ.
2: ठीक, तो उसमें क्या हुआ, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो हमेशा मतलब मेरे से हमेशा जो मेरी बंदी है ना, ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता. हालांकि ऐसे टेंटम्स नहीं होते थे उसके, लेकिन आप समझ रहे हो ना, मेरी जिंदगी बिल्कुल बेजान थी, सूखी पड़ी थी.
0: पर आपके पास तो गर्लफ्रेंड है, तो सूखी क्यों पड़ी थी आपकी जिंदगी?
2: नहीं, उसने होता है ना, अपने से प्रॉमिस कर रखा था कि शादी के बाद ही सब कुछ करेंगे.
0: वन ऑफ दोस. अच्छा ठीक है.
2: 5 साल, क्योंकि पहले तो मैं कंधा रहा उसका.
0: हाँ.
2: ठीक है. हाँ. तो कंधा बन के मैंने उसका बहुत साथ दिया, बहुत ये सब किया. उसके बाद जाकर वो आई, तो उसने एक ऐसा अपने से प्रॉमिस कर लिया था कि नहीं यार.
0: हाँ.
2: हमें ना नहीं करना शादी से पहले.
0: हाँ.
2: तो आपको पता है ना, जब लड़के बैठते हैं, आप लोग भी जब बैठते होंगे, लड़कियां भी बैठती होंगी, तो एक ऐसी वाली बात होती है.
0: तो
2: मेरे जो बेस्ट फ्रेंड था ना, उसे सब कुछ मिल रहा था.
0: हाँ.
2: तो मैंने कहा भाई कैसे?
0: हाँ.
2: तो कहता है यार नीड्स पूरी करनी पड़ती है.
0: हाँ.
2: अब आपको समझ आ रहा होगा, मैं यहाँ पर दूसरे रूम में हूँ, मेरे माँ बाप बाहर बैठे हैं, तो मैं बहुत धीरे धीरे बात कर रहा हूँ आपसे. ठीक है, तो भाई मतलब इतने डोमिनेटिंग पेरेंट्स के साथ तुम कहाँ से पैसा खर्च करोगे ज्यादा?
0: हाँ, हाँ.
2: तो उसे एक बैग चाहिए था.
0: हाँ,
2: ठीक.
0: हाँ.
2: तो मैंने जुगाड़ लगाया और मैंने ना उसे सेकंड कॉपी ला कर दे दी उस चीज की. और उसे लग रहा है कि मैंने उसे बहुत महंगा वाला, जो उसे पसंद था, वो वाला बैग दिया.
0: तो आपने ओरिजिनल नहीं लेके दिया, फेक बैग लेके दिया उसको, और आप कह रहे हैं कि ओरिजिनल है.
2: पर रोशी मुझे रियल मिलने लग गया. फेक बैग के साथ रियल मिलना. सारे उसके प्रॉमिसेस टूट चुके हैं अपने से. और मैं बता रहा हूँ, वीक में 2 से 3 बार मिल रहा है हम लोगों को.
0: मुझे ना इतने डिटेल्स चाहिए नहीं थे. मतलब मैं पहली बार नहीं समझ गई थी कि खुश हो गए वहाँ पे, और मतलब और क्या डिटेल्स दोगे. मुझे नहीं लगता कि मेरे रोशिफिकेशन की कोई वैल्यू आपके यूनिवर्स में है ना, बिकॉज अभी तो आपके साथ जो मजे हो रहे हैं उसमें रोशिफिकेशन की क्या ही जगह है. बट फिर भी कर दूं.
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
0: मतलब जो आ रहा है आने दो, व्हाटएवर इज कमिंग.
2: कुछ रोकना नहीं है. बहुत दिनों बाद यहाँ पर हरियाली.
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो यार.
3: You've been roshified.
0: It was very nice talking to you, mystery caller. यार, इन mystery caller से मैं और बात नहीं कर सकती, नहीं तो मुझे 2 मिनट में अपनी फेवरेट पोजीशन भी बता देंगे. अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है, फील फ्री टू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. काम है आपसे प्यार करना. आई ऑल्सो गेट एंटरटेन ऑन द साइड, सो हिट मी अप, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू. पर कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

समझ में ना आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ हो बादशाह।

अगर आप किसी से नाराज हो, किसी ने आपका दिल दुखाया है, आई डोंट एडवाइज यू टू फॉरगिव देम। सबसे पहले जो फीलिंग्स ऑफ एंगर है ना, उन्हें फुल फोर्स में फील करो, क्योंकि अगर आप उन्हें दबा कर किसी को फॉरगिव कर दोगे, टू फॉरगिव देम, ये फॉरगिवनेस सच में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस गुस्से के सीड्स अभी भी आपके अंदर हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अभी भी यू आर होल्डिंग अ ग्रज अगेंस्ट दैट पर्सन। लेकिन जब आप इसे फुल स्ट्रेंथ में फील करते हो ना, देन यू रियलाइज कि यार ये इतना इंटेंस इमोशन है कि मैं इसे पकड़ नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ, एंड दैट्स व्हेन यू लेट गो, दैट्स व्हेन यू फॉरगिव, नॉट फॉर द अदर पर्सन बट फॉर योरसेल्फ, क्योंकि आप अपने आप को इस इंटेंस इमोशन से लिबरेट करना चाहते हो। इस फॉरगिवनेस के पर्सपेक्टिव के बारे में सोचो, कैसा लगा आपको ये मुझे बताने के लिए। आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर, मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। एंड व्हाइल यू डू दैट, एक चीज हमेशा याद रखना, जिसके पास लव है उसके पास सब है, एंड आई लव यू लोड्स।

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: Yaadein kabhi purani nahi hoti. सिर्फ उन्हें याद करने की वजह बदल जाती है, इसलिए कुछ गाने, कुछ फिल्में और कुछ आवाजें सालों बाद भी बिल्कुल वैसी ही महसूस होती हैं। हिट होना अलग बात है, याद रह जाना वो बहुत बड़ी बात है। और शायद इसलिए बॉलीवुड में सबसे मुश्किल काम ब्लॉकबस्टर बनाना नहीं, एक लेगेसी बनाना है। आज के काउंटडाउन में भी कुछ नए गाने होंगे, कुछ पुरानी यादें होंगी और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो शायद आप घर ले जाएंगे। हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी फिल्म म्यूजिक / बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन। और शुरुआत कर रहा हूं विद द फर्स्ट सॉन्ग जो है नंबर 20 की पोजीशन पर। मुझे लगा था शायद ये अलविदा कहने वाला है, लेकिन नहीं, ये हमारे लिए थोड़ा और रुक गया है। द ग्रेटेस्ट लव सॉन्ग फ्रॉम लास्ट ईयर, दिस इज सैयारा
3: नंबर 20.

0: कॉकटेल 2 एक लंबी लिस्ट का हिस्सा बन गया है. Films that created some excitement at the start, लेकिन उसके बाद, well, they just exist. इनके बारे में हमें पता है, लेकिन इनके साथ वो कनेक्शन नहीं बन पाया है. कभी-कभी किसी फिल्म की सबसे बड़ी पब्लिसिटी उसका ट्रेलर नहीं होती, उसका गायब हो जाना होती है. पिछले हफ्ते एक फिल्म ने पूरे देश को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया. सतलज रिलीज हुई, लोगों ने देखनी शुरू की और फिर रातों रात फिल्म हटा दी गई. एक वजह भी बताई गई पर वजह कन्विंसिंग नहीं थी. बहस शुरू हो गई लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात घूमती रही, अगर कोई कहानी इतनी खतरनाक है कि उसे देखना ही नहीं चाहिए तो उसे हटा देने के बाद लोग उसे और ज्यादा क्यों ढूंढते हैं. शायद क्योंकि इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी होती है, जिस दरवाजे पर नो एंट्री लिखा हो सबसे पहले वही दरवाजा खोलने का मन करता है. और इंटरनेट के जमाने में एक बार कोई चीज दुनिया के सामने आ गई, उसे मिटाना शायद उसे और ज्यादा फैला देने जैसा होता है. नंबर 18 पर इस हफ्ते है तू ही दिसदा भूत बंगला से, एंड देन एक ऐसी फिल्म जिसने किसी कंट्रोवर्सी से नहीं सिर्फ लोगों की मोहब्बत से अपनी जगह बनाई है. दिलजीत दोसांझ सतलज में भी है और इस फिल्म में भी है. तो मैं वापस आऊंगा. और नंबर 17 दिस इज मस्कारा.
1: Number 17.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 16.

Wow, the craziest songs from Dhurandhar 2. ये था मैं और तू by Jasmine Sanilas. And I don't know अगर धुरंधर एक सच्ची कहानी है या it's fiction. But Bollywood filmmakers को सच्ची कहानियाँ पसंद बड़ी हैं. Which is why we love our biopics. And एक और biopic देखने के लिए अब जनता उत्सुक है. सौरव गांगुली की biopic दादा. क्योंकि इस हफ्ते उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक आ गया है एंड मैं शायद माइनॉरिटी में हूं लेकिन मुझे क्रिकेट बायोपिक्स का कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड लगता है. क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है ये लड़का? वेल, क्योंकि कुछ जिंदगियां एक फिल्म में नहीं समा पाती. सोचिए सौरव गांगुली लॉर्ड्स में एक डेब्यू सेंचुरी, मैच फिक्सिंग के बाद इंडियन क्रिकेट की कमान संभाली, देन 2002 में वो नैटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल. And then आया उनका सबसे मुश्किल चैप्टर, ग्रेग चैपल एज द कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. उस वक्त सौरव कप्तान थे, फिर टीम से बाहर हो गए और फिर एक कमबैक भी हुआ. एंड देन यू गॉट क्रिकेट के बाद की जिंदगी. सिर्फ यही कहानी सुनाने अगर बैठोगे तो 10 घंटे निकल जाएंगे. एंड सौरव गांगुली द क्रिकेटर तो एक तरफ है, इसके अलावा सौरव गांगुली द पर्सन, द ह्यूमन बींग भी तो दिखाओगे. और यही वजह है कि मुझे लगता है कि क्रिकेट बायोपिक्स अक्सर स्कोर कार्ड दिखा देती हैं.

ने के बाद भी मैं सौरव गांगुली की बायोपिक को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल हूं, क्योंकि कुछ कहानियां फिल्म नहीं वक्त मांगती है। सिर्फ एक एमएस धोनी की बायोपिक थी विच वर्क्ड फॉर सम रीजन, बट उसके अलावा 83 अजर ना नॉट सो मच। क्या नंबर 15 पर इस हफ्ते डेब्यू कर रहा है एक नया गाना मेरे फेवरेट आर्टिस्ट तलविंदर की आवाज में, पल पल जीना मुहाल। गाना याद है ना? Well, ye gaana hai Q from Welcome to the Jungle and it's here on the Mirchi Top 20. Number 15.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 5।

शरारत 20 हफ्तों तक जिस गाने ने नंबर वन पर रूल किया आज पहली बार किसी और पोजीशन पर है। और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि एक गाना नीचे आया है, इसका मतलब ये है कि इस काउंटडाउन को एक नया नंबर वन सॉन्ग मिलने वाला है। वैसे शरारत का मतलब होती है एक छोटी सी प्यारी सी गलती, अ प्लेफुल मिस्टेक। लेकिन बॉलीवुड में कुछ चीजों के साथ शरारत करने की इजाजत नहीं होती, कुछ फिल्मों के साथ, कुछ एल्बम्स के साथ, क्योंकि वो सिर्फ हिट नहीं होती, वो यादें बन जाती हैं। नंबर चार पर इस हफ्ते है चुनरी चुनरी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। गाना तो वापस आ गया लेकिन वो फीलिंग नहीं आई, और वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्लासिक को रिक्रिएट करना आसान है, उसकी रूह को वापस लाना नामुमकिन के बराबर। इसलिए आवारापन 2 को लेकर इतनी एक्साइटमेंट है। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो इमरान हाशमी की वो दुनिया थी जहां गाने खत्म होने के बाद भी हमारे दिलो दिमाग से निकल नहीं पाए। एंड देन वी हर्ड ऑफ आवारापन 2, जिसका नया गाना वे जुनून हमने पहली बार सुना।

Now on first listen, लगा ठीक है. दूसरी बार सुना तो लगा एक सेकेंड जरा रुको. एंड देन तीसरी बार I had goosebumps. ये गाना हिट होने की कोशिश ही नहीं कर रहा, ये आपके अंदर उतरना चाहता है, बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह, जहर की तरह. और तब समझ आया कि लोगों ने वो बात क्यों बोली थी. अखा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ. My special request of the week is the same team that is giving us Ve Junoon in Awarapan 2. Imran Hashmi aur unke saath is gaane ke composer Mithun. Aur isi combo ne ek aur gaane mein jadoo bikhera tha. Jab kai baar dil tootne ke bawajood phir mohabbat karne chalta hai. Special request.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 3।

0: ऊंचा लंबा कट फ्रॉम वेलकम टू द जंगल। हाय, बॉलीवुड सीक्वल्स बहुत बनाता है, लेकिन इंसान, एक इंसान के सीक्वल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस हफ्ते रणवीर सिंह टर्न्ड 41 और मुझे एहसास हुआ कि पिछले 16 सालों में मेरी मुलाकात 3 अलग अलग रणवीर सिंह से हुई है।
1: मैं तो बॉलीवुड का सब्सक्राइबर रहा हूँ अपने बचपन से, लेकिन ओवर द इयर्स हमारी इंडस्ट्री में भी एवोल्यूशन आया है। जैसे कि पहला था, आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। थिंग्स आर लॉट मोर कॉर्पोरेट, लॉट मोर स्ट्रीमलाइंड, प्रोफेशनैलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है इंडस्ट्री में। तो मुझे खुशी है कि मैं ऐसे टाइम पर आया हूँ जब अलग टाइप की फिल्में बन रही हैं और इंडस्ट्री इतनी एक्सपैंड हो गई है। मैं आदि सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी पहली फिल्म दी, और मेरे तो बचपन का सपना पूरा हो गया जी, मैं क्या बताऊँ।
0: एक वो रणवीर था जो हमें बैंड बाजा बारात के बाद दिखा, नया, बेचैन, ओवर द टॉप। जैसे हर इंटरव्यू में वो दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहता था कि मैं यहाँ टिकने आया हूँ।
2: क्या बोलो यार, इट्स अ वेरी ब्लेस्ड टाइम, अच्छा टाइम चल रहा है, टचवुड कुछ तो अच्छा किया होगा। बट ट्रूथ बी टोल्ड, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। इट्स लाइक लाइफ हाईलाइट आफ्टर लाइफ हाईलाइट। आई एम लाइक, व्हाट्स गोइंग ऑन? आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू बट सेलिब्रेट। एंड पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग दैट नाउ मोर देन एवर बिफोर। यू नो, दे डिड काइंड ऑफ इन लाइक 13-15, देयर वाज लुटेरा एंड रामलीला इन 2013, देयर वाज दिल धड़कने दो बाजीराव मस्तानी इन 15, नाउ इट्स लाइक खिलजी, सिम्बा एंड कर्ली बॉय। इट्स लाइक wow, so it's a conscious endeavor to you know showcase that versatility and it's all happening, so I'm really happy about it.
0: Phir mila dusra Ranveer, ab wo superstar ban chuka tha, use apne talent ka andaaza tha, use pata tha ki wo kitna acha actor hai, Ronis ki jagah yakeen aa chuka tha, lekin uski energy abhi utni hi badi thi jitna uska ambition, lekin abhi wo bechain tha. Aur phir aaya teesra Ranveer, खामोशी, नो इंटरव्यूज, नो हेडलाइंस, नो एक्सप्लेनेशंस, सिर्फ एक फिल्म और उसके दो हिस्से जिसने दुनिया से बाकी सब कुछ कह दिया। अजीब बात है ना, करियर की शुरुआत में रणवीर चाहता था कि दुनिया उसे सुने, आज दुनिया उसे सुनना चाहती है, लेकिन मिल रही है तो सिर्फ खामोशी। आई टोल्ड यू, आज वी अबाउट टू गेट अ ब्रांड न्यू नंबर वन सॉन्ग। ठीक है, ये गाना ब्रांड न्यू है नहीं, ये वो गाना है जिसे हमेशा नंबर वन होना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी खामोशी है, एक गहरी वाली खामोशी। द नंबर वन सॉन्ग ऑन द मिर्ची टॉप 20। नंबर वन।

0: The Crown is now on the best song of the show. शायद इसी में इस गाने की सबसे बड़ी जीत छुपी है। इसने हमें याद दिला दिया कि हर चीज वायरल होने की जरूरत नहीं होती। कुछ फीलिंग्स, कुछ वाइब्स धीरे धीरे दिल में उतरती हैं और फिर वहीं रह जाती हैं। इट्स टाइम टू एंड दिस एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉप 20, बट फिर मिलूंगा। इनफैक्ट मैं भी वापस आऊंगा। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

पहली नजर में हो गया है तुमसे प्रेम, आज रात एक

Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची पर अब बारी है फॉर असली पॉप काउंटडाउन ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑफकोर्स एज अ स्पेशल स्पॉटलाइट। ऑल दिस एंड मोर, तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी, दीप क्लेयर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स। गाने का नाम है साडी सुन। तीन हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार साडी सुन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद अनीश सरकार का उड़ी उड़ी पांच हफ्तों से इस काउंटडाउन पर अपना धावा बना के बैठा है। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार उड़ी उड़ी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: लग जाए।
1: कहाँ है वो लोग, नजर नहीं आ रहे जो बोलते रहते हैं कि सारे इंडिपेंडेंट गाने एक ही जैसे साउंड करते हैं। ये वाला सुनिए, अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी। व्हाट अ बैंगर ऑफ अ सॉन्ग, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाए, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है, पूरे दिन इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, तो कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इस काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स बाय एन आर्टिस्ट जिनकी आवाज सुनते ही ना, मतलब मेरे को एकदम वो मजे आ जाते हैं। यू नो देयर आर दीज वॉइसेस व्हिच मेक यू फील रियली हैप्पी। वो बोलते हैं खनक है उनकी आवाज में। आई एम टॉकिंग अबाउट एश किंग, जिन्हें मोस्ट पॉपुलरली हम जानते हैं एज वॉइस बिहाइंड सॉन्ग्स लाइक
3: आई लव यू।
1: कुछ बात उनकी आवाज में सुनते ही ऐसा मूड अच्छा हो जाता है। एंड इस आवाज को ढूंढ के हमारे पास लाए थे AR रहमान। साल 2009 में दिल्ली 6 में उन्होंने अपना पहला हिंदी गाना गाया था। एंड द फनीएस्ट पार्ट अबाउट दैट कोलैबोरेशन इज दैट उस समय एश किंग की हिंदी डिक्शन इतनी अच्छी नहीं थी, वो बस UK से आए थे, बट AR रहमान सर ने उन्हें सुना एंड ही वॉज लाइक आप मेरे लिए ये गाना गा रहे हैं। एंड तब एश किंग ने AR रहमान के लिए ये वाला गाना गाया। गाने का नाम है दिल गिरा दफतन। दिल्ली 6 की बहुत बड़ी एल्बम मसक अली अर्जियां के पीछे अगर इस गाने को भूल गए थे तो वापस इसको याद कर लीजिए। तब से लेके अब तक एश किंग हैज बीन द वॉइस बिहाइंड सम ऑफ द ग्रेट सॉन्ग्स लाइक मेहरबान, TMO। 2019 में उनका एक इंडी पॉप गाना आया था कॉल्ड हाई।

0: रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। नई नवेली एंट्री डेब्यू कर रही है सीधा ऐश किंग की आवाज में। गाने का नाम है किनिया सोनी। ये गाना डेब्यू कर रहा है दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: नंबर 8।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: आदित्य रिखारी कुटले खां की आवाज रावटोर का म्यूजिक कोक स्टूडियो भारत का गाना दिस वाज ए अजनबी। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना अनूप जैन की आवाज में, एक गाने का नाम है अर्ज किया है, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। 24 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार अर्ज किया है वाज ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello, स्वागत है आपका। This is the Ghana Indie Top 10. बंदी का नाम है RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week, all about the hottest pop stars of the music scene. Instagram पर जाओ, मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना शेयर करना हो, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 6 पर हमने सुना ए अजनबी इन द वॉइस ऑफ आदित्य रिखारी एंड कुटले खां, एक कोक स्टूडियो भारत का गाना। किसी भी आर्टिस्ट के लिए गाना एक बहुत बड़ी बात होती है। हर आर्टिस्ट का सपना होता है एक कोक स्टूडियो भारत का गाना करना, एंड आदित्य रिखारी पिछले कुछ ही सालों में वो चोजन पॉप स्टार बन चुके हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट ना, ये स्टार बनने के मायने बदल गए हैं। स्पेशली पॉप म्यूजिक में रिवाइंड करूं, 20 साल पहले आप चूज किए जाते हो, आपकी एल्बम आती है, आपको ब्रेक मिलता है, तब आप फेमस होते हैं। लेकिन अब पहले ऑडियंस आपको देखती है, डिसाइड करती है, आपके साथ एंगेज करती है, तब आपको आपका ब्रेक मिलता है। एंड आदित्य रिखारी उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। दिल्ली के एक यंग सिंगर सॉन्ग राइटर लॉकडाउन के दौरान अपने कमरे से अपने गाने अपलोड कर रहे थे, पर उनके गाने ऐसे फॉरवर्ड हो रहे थे, वायरल हो रहे थे हर जगह, बिकॉज वो हमको हमारी ही कहानी सुना रहे थे। एंड देन उनका गाना आया कॉल्ड फासले। इस गाने ने उनको म्यूजिक मैप में पिन कर दिया था, एंड देन केम समझो ना। इस गाने के बारे में तो मैं जितनी बात करूं कम है। इट गॉट अडैप्टेड इन अ कार्तिक आर्यन मूवी, जो एक दिल्ली से आए यंग सिंगर सॉन्ग राइटर के लिए बहुत बड़ी बात है। पर मेरे हिसाब से आदित्य रिखारी का सबसे बड़ा गाना इस साहिबा। उनके जितने कॉन्सर्ट होते हैं, वो जब भी इंटरव्यू करते हैं, आप कहीं चले जाए, एक गाना जो हर फैन उनसे डिमांड करता है कि प्लीज ये वाला गाना गा दीजिए, वो गाने का नाम है साहिबा। तो अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। अ स्पेशल स्पॉटलाइट ऑन आदित्य रिखारीज बेस्ट सॉन्ग दिस इज साहिबा, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

आदित्य निगारी की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज, दैट वॉज साहिबा। दिस सॉन्ग इज अ रिमाइंडर दैट एक अच्छे गाने को किसी बड़ी फिल्म या बड़े हीरो की जरूरत ही नहीं होती है। एंड आई एम प्रिटी श्योर आदित्य निगारी ऐसे और एग्जाम्पल्स हमको देते जाएंगे। काउंटडाउन में आगे बढ़ते हैं। अगले वाला गाना इज बाय संजू राठौड़, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है बैंगल्स। 5 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैंगल्स इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5। नंबर 5।

गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4।

0: दिलजीत दोसांझ, सिया, डेविड गेटा का गाना, गाने का नाम है रांझा, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। रांझा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आए, मेरे साथ कनेक्ट करी, कोई गाना सजेस्ट करना है, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल
1: कनिकास कसर क्लासिक।
0: हमारी कसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा फिर सबके दिल को।
0: द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज

0: कभी।
1: गाने का नाम है बूंदे बाय द सिल्क रूट। ये गाना 1998 में आया था, सिल्क रूट द बैंड की डेब्यू एल्बम बूंदे का ही पार्ट था। जब ये एल्बम रिलीज हुई थी, सिल्क रूट ने पॉप म्यूजिक स्पेस में अकूस्टिक गिटार, फोक इन्फ्लुएंसेस एंड सॉफ्ट मेलोडी, वेरी पोएट्री फर्स्ट गानों को इंट्रोड्यूस किया था। बैंड के लीड वोकलिस्ट मोहित चौहान, बैंड मेंबर्स अतुल मित्तल, केम त्रिवेदी एंड केनी पुरी, उनकी म्यूजिक आइडेंटिटी किसी फिल्म से कम नहीं थी। उनकी म्यूजिक वीडियोज, द वे देयर म्यूजिक ट्रैवल्ड इज समथिंग जो आज भी हम जानते हैं। इसी एल्बम का पार्ट था डूबा डूबा, जो हर घर तक पहुंच गया। पर उस एल्बम में और बहुत सारे ऐसे जेम्स हैं जिन्हें आपको कभी फुर्सत लेके सुनना चाहिए। एंड अगर आप सच में उनकी म्यूजिकलिटी को जेन्युइनली एंजॉय करना चाहते हो, तो ये वाला गाना बूंदे उसे परफेक्टली डिफाइन करता है। गाने के लिरिक्स प्रसून जोशी ने लिखे थे और उसमें बारिश ना सिर्फ ऐसे मौसम का पार्ट नहीं है, बल्कि बूंदों को यादों से कंपेयर किया गया है, किसी की खुशबू से कंपेयर किया गया है, एक ऐसी प्रेजेंस से कंपेयर किया गया है जो हमारे सामने नहीं है बट आप हर जगह महसूस करते हैं। आज भी जब मैं ये गाना सुनती हूँ तो प्रोडक्शन में भी आपको 19-20 लग सकता है, बट द इमोशन इज सो फ्रेश एंड शायद इसीलिए ये एक प्रॉपर क्लासिक है। तो अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। सिल्क रूट द बैंड का गाना मोहित चौहान की आवाज में, दिस इज बूंदे, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

मैन ओ मैन, व्हाट इज दिस सॉन्ग? ऐसा लग रहा है कि मैं किसी की मेमोरी में ऐसे फ्लोट कर रही थी. मोहित चौहान की आवाज, सिल्क रूट द बैंड का गाना, दैट वॉज बूंदे ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. पिंच मी अश्काई, बिकॉज आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्स वी हैड सो फार. एट RJ कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ. अश्काई माई साउंड प्रोड्यूसर, और मैं आपकी सारी सजेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं. 90s 2000s का वो इंडी पॉप गाना जो आज भी आपके लिए सुपर स्पेशल है, हमसे आके शेयर करिए. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. इट इज अगेन अ दिलजीत दोसांझ सॉन्ग. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम किया ये गाना. गाने का नाम है डीलर. 16 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. डीलर इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप। शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, लेकिन एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर इस हफ्ते हर्ष नुसी का साड़ी सुन। उसके बाद अनीश सरकार का उड़ी उड़ी और गाना नंबर 9। एक नई नवेली एंट्री, एश किंग का गाना किनिया सोनी ने डेब्यू किया है और गाना नंबर 8। This song is getting stronger by the week. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके अर्ज किया है this week on गाना नंबर 7।
2: कायर जो थे वो शायर बने।
1: उसके बाद आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां का गाना, एक और कोक स्टूडियो भारत का गाना ए अजनबी on गाना नंबर 6। संजू राठौड़ का बैंग गर्ल्स on गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 4। बैक टू बैक बाय दिलजीत, उनका गाना डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। जिधर तू पीछे यातन गीना चौपर जोगी डब दबीना। एंड नाउ फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, बंजारे का गाना बैरन 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2 एंड द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। मिट्टा रौर का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन मिट्टा रौर स्वरा वर्मा की आवाज में, गाने का नाम है शीशा, वंस अगेन ऑन गाना नंबर 1। ये दोनों गाने बैरन ऑन गाना नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी। रेडियो मिर्ची के साथ
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: फॉर्म नंबर 36 पे आएगी।
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो।

0: हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पर कॉफी से पहले एनर्जी और चाय से पहले बकबक बिल्कुल फ्री में मिलती है। व्हेन यू आर स्टक ऑन द टर्न पाइक, या फिर पैकिंग योर लंच बॉक्सेस, या फिर हेडिंग टू वर्क, या फिर बस प्रिटेंडिंग कि कैमरा तो ऑफ है लेकिन मैं मीटिंग में फुल्ली अटेंटिव हूँ। जो कुछ भी कह रहे हो, आई गॉट यू, आई एम विथ यू फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स। आज का मिशन काफी सिंपल है, थोड़ा सा हंसना, थोड़ा सा गाना, थोड़ा सा रोना। नो, देयर इज एब्सोल्युटली नो रोना हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। हम करेंगे बहुत सारा बॉलीवुड का तड़का, ढेर सारी नॉस्टैल्जिया की बातें, काफी सारी देसी फील्स वाली बातें, और ऑफ कोर्स साथ में होने वाले मिर्चीदार बैंगर्स ओनली फॉर यू ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसला, मेरे साथ बने रहो अगले कुछ घंटों के लिए ताकि तुम्हारी लाइफ और मिर्चीदार बन सके। अभी फिलहाल मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
1: अरे यूं के बड़ा गोरी भाई, बजा।

Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot.

गुड मॉर्निंग जी, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगले एक मिनट में हम करने वाले हैं थोड़ी बहुत टाइम ट्रैवलिंग। सो लेट्स फाइंड आउट 1762 में क्या हुआ, जब कैथरीन द ग्रेट बिकेम द ज़ारीना ऑफ रशिया। फिर 1990 में रशिया के ज़ार निकोलस द सेकंड और उनकी फैमिली को एग्जीक्यूट किया गया। 1936 में शुरू हुई स्पैनिश सिविल वॉर। अब मूड को थोड़ा सा होपफुल करते हैं। 1975 में स्पेस में हुआ एक हैंडशेक दैट मेड द वर्ल्ड स्माइल। अमेरिका का अपोलो स्पेसक्राफ्ट और सोवियत का सोयूज कैप्सूल सक्सेसफुली डॉक हुए। कोल्ड वॉर के बीच में ये मोमेंट प्रूफ था कि कभी कभी डिस्टेंस सिर्फ अर्थ पर होता है। और अगर तुम डिज्नी फैन हो मेरी तरह, तो 1955 में आज ही के दिन डिज्नीलैंड ने कैलिफोर्निया में अपने गेट्स खोले थे। हिस्ट्री के आज के दिन के कुछ पेनफुल पेजेस भी हैं। 1996 में द WTA फ्लाइट 800 का ट्रैजिक एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन फिर 1998 में रोम स्टैच्यू अडॉप्ट हुआ, जिसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की फाउंडेशन रखी। और 2014 में मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH17 ट्रेजेडी ने दुनिया को शॉक कर दिया। और हम उन सब लोगों को आज रिस्पेक्टफुली याद करते हैं। एंड दैट्स इट फॉर योर टाइम ट्रैवलिंग जर्नी विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अभी फटाफट से जाओ मेरे सोशल्स चेक करो। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी के लिए मिर्ची दर बैंगर्स का टाइम है। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे तुम मिर्ची मॉर्निंग।
1: मिर्ची वॉच इट, मिर्ची वॉच इट।
0: एंड वर्ल्ड कप फीवर इज ऑफिशियली पीकिंग। स्पेन और अर्जेंटीना का ग्रैंड फिनाले ब्लॉकबस्टर होने वाला है एट द मेटलाइफ स्टेडियम न्यू जर्सी इस संडे 19th ऑफ जुलाई को। लेकिन उसके पहले थर्ड प्लेस प्ले ऑफ होने वाला है बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ने मिलकर होस्ट किए अब तक 8 मैचेस थ्रू आउट द टूर्नामेंट एट मेटलाइफ स्टेडियम। और कल का बिगेस्ट बस था, फीफा ने अनाउंस किया है कि हिस्ट्री में पहली बार वर्ल्ड कप चैंपियंस को सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं बल्कि एक्सक्लूसिव चैंपियनशिप रिंग्स भी मिलने वाली है। टोटल 2026 इंडिविजुअली नंबर्ड रिंग्स बनेगी 30 चैंपियंस के लिए और बाकी फैंस के लिए। लेकिन अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हावियर मिले फाइनल देखने के लिए न्यू जर्सी नहीं आ रहे। क्यों? सुपरस्टिशन है भाई, उनका मानना है कि वो घर से ही मैचेस देखते आए हैं और टीम जीतती रही है तो रूटीन चेंज नहीं करेंगे। मतलब कि लकी जैकेट हो या लकी सोफा हो, फुटबॉल फैंस की फीलिंग काफी सिमिलर है क्रिकेट फैंस की फीलिंग्स के साथ। और टॉप फुटबॉल फैक्ट्स, टूर्नामेंट में अभी तक लायनल मेसी गोल्डन बूट रेस में टॉप पर पहुंच चुके हैं 8 गोल्स और 4 असिस्ट्स के साथ। रॉड्री हैज बीन मिडफील्ड मेट्रोनोम विद द मोस्ट पासेस। और स्पेन के यंगस्टर लामिन यमाल सक्सेसफुल टेक ऑन्स में सबसे आगे हैं। फाइनल में इन स्टार्स पर सबकी नजर बनी हुई है। अब सवाल ये है, रिंग किस फिंगर में जाएगी, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में? अरे भाई, जिस हाथ में ट्रॉफी जाएगी उसी हाथ में। तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, अर्जेंटीना या स्पेन को? फटाफट से मुझे बताओ। डीएम करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग सनशाइन, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब वेदर का हालचाल जानने का टाइम आ चुका है। फिलहाल टेम्परेचर हो रहा है 67 डिग्रीज फारेनहाइट, स्काइज आर मोस्टली क्लियर, तो सुबह की ड्राइव एकदम मस्त मस्त होने वाली है। सुबह 9 बजे से थोड़े से क्लाउड्स जो हैं वो हेलो बोलने वाले हैं, और 9 बजे के बाद स्काई थोड़ा और क्लाउडी हो जाएगा। रेन लवर्स सॉरी यार, आज के लिए भी, अगले 24 घंटों में भी पिछले 24 घंटों की तरह 0 मिलीमीटर्स की बरसात होने वाली है। रेन का फोरकास्ट नहीं है, यानी कि अम्ब्रेला को आज वर्क फ्रॉम होम करने दिया जाए। आफ्टरनून में मर्क्यूरी चढ़ने वाली है 87 डिग्री फारेनहाइट तक, और ह्यूमिडिटी की वजह से फील होगी 89 डिग्री फारेनहाइट के आसपास। मतलब कि वेदर बोलने वाला है कि मैं बहुत हॉट हूं आज, बिल्कुल मिर्ची की तरह। और एक इंपॉर्टेंट हेड्स अप, एयर क्वालिटी अलर्ट इज इन इफेक्ट। आज के दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 तक पहुंच गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी कैटेगरी में आता है। अगर तुमको एस्मा, एलर्जीज या ब्रीदिंग इश्यूज हैं, तो आउटडोर एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं करना, या बहुत ही ज्यादा लिमिट में करना है। विंडोज को बंद रखना है अगर पॉसिबल हो, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। मॉर्निंग वॉक्स के लिए आज इंडोर में ही रहना, मतलब घर पर रहकर कुछ एक्सरसाइज कर लेना, बिकॉज ये AQI इज प्रीटी बैड। गुड न्यूज ये है कि आज का हाई इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक कल का हाई, तो वेदर जो है उसमें कोई प्लॉट ट्विस्ट आज के दिन है नहीं। तो जैसा कल का दिन गया था ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, वैसा आज का दिन भी जाने वाला है। लेकिन हम इसे बनाएंगे थोड़ा सा और मिर्चीदार। बाहर निकलते वक्त लेयर के प्लेयर बनना, वेयर योर सन प्रोटेक्शन SPF 50++++ के साथ, एंड ऑफकोर्स कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। और मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। अभी चलाते मिर्चीदार बैंगर्स ओनली फॉर यू, स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए अराउंड द वर्ल्ड की खबरें, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले यूएस में ट्रक ड्राइवर्स को लेकर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट काफी हेडलाइंस बना रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन और ट्रकिंग वर्कफोर्स को लेकर कमेंट्स दिए हैं और कहा है कि इलीगल इमिग्रेंट ट्रक ड्राइवर्स की जगह अमेरिकन वेटरन्स को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस डिस्कशन का असर उन इमिग्रेंट कम्युनिटीज पर भी पड़ सकता है जहाँ काफी साउथ एशियन ट्रक ड्राइवर्स काम करते हैं। पॉलिसी डिस्कशन अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं, तो देखना होगा आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं। नंबर टू पर मिडिल ईस्ट से टेंशन की खबर आ रही है। ईरान ने कहा है कि उसने बहरीन और कुवैत में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज को टारगेट किया है, जबकि यूएस ने ईरानियन मिलिट्री साइट्स पर नए एयर स्ट्राइक्स किए हैं। इस एस्केलेशन की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिपिंग ट्रैफिक फिर से इंपैक्ट हो रही है। एंड नंबर थ्री पर पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा से एक हार्ट ब्रेकिंग अपडेट। रिपोर्ट्स के हिसाब से हैवी क्राउड रश के दौरान करीब 100 डिवोटीज इंजर हुए हैं और एक व्यक्ति की जान चली गई है। इंजर्ड लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर तुम्हारे लव्ड वंस फेस्टिवल अटेंड कर रहे हैं, उनसे क्विक चेक इन कॉल जरूर कर लेना। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का थ्री। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। कनेक्ट विथ मी ऑन सोशल्स। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची। दैट्स 9033647244। एंड नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। तो सीन कुछ ऐसा है कि स्पाइडरमैन के टॉम हॉलैंड ने मजाक में रिवील किया रिसेंटली कि फुटबॉल सुपरस्टार अर्लिंग हॉलैंड ने उनका डिनर इनवाइट वाला डीएम जो है उसे इग्नोर कर दिया। आउच। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये है कि इंटरनेट पर बात इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि अब हॉलैंड ने ऑफिशियली रिप्लाई तो कर दिया है कि डिनर इन्विटेशन एक्सेप्टेड अ लिटिल लेट, जस्ट नेम द प्लेस। वाह यार, बेटर लेट देन नेवर। और हॉलैंड ने रीज़न भी दिया है कि मैं मूवीज़ नहीं देखता, मैसेज अननोन पर्सन का लगा इसीलिए रिप्लाई नहीं किया। मतलब इमेजिन करो यार, दुनिया का स्पाइडरमैन भी कभी कभी लिस्ट में न्यू नंबर हु दिस वाले मीम में फंस जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी कभी डिलेड रिप्लाई इज नॉट एक्चुअली गोस्टिंग, समटाइम्स इट्स जस्ट ऑकवर्ड। वैसे मज़ा तो तब आएगा जब हॉलैंड और हॉलैंड दोनों एक साथ डिनर करेंगे। किस नाम से बुलाएंगे एक दूसरे को? दोनों के नाम तो एक ही तरह साउंड करते हैं। वैसे जो भी हो, डिनर काफी स्पेशल ओकेजन वाला लग रहा है। और स्पेशल ओकेजन की बात हो ही रही है तो परफेक्ट ज्वेलरी की बात कैसे ना हो। आरके ज्वेल्स लेकर आए तुम्हारे लिए बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस के साथ उनकी स्टनिंग कलेक्शन तुम्हारे एक्सप्लोर करने के लिए। और अभी वहां पर मिल रहा है फ्री $250 का गिफ्ट कार्ड ऑन देयर एक्सक्विजिट ज्वेलरी कलेक्शन। क्योंकि डायमंड्स मे बी फॉरएवर, लेकिन गुड डील्स या ऑफर्स जो है ना वो कभी कभी आते हैं। आरके ज्वेल्स पर फटाफट से पहुंचो अगर तुम्हें ज्वेलरी शॉपिंग करनी है तो। और मिर्ची पर बने रहो, मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

वेरी हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन सेलिब्रेटिंग टुडे. चाहे तुम न्यू जर्सी में हो या फिर न्यूयॉर्क के ट्रैफिक में फंसे हुए हो, बॉस्टन में कॉफी सिप कर रहे हो या फिर फिली में वर्क फ्रॉम होम करते हुए आई एम ऑन म्यूट कह रहे हो, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड गेस व्हाट, आज तुम्हारा बर्थडे तुम अकेले नहीं मना रहे हो, तुम्हारे साथ कुछ फेमस पर्सनैलिटीज भी हैं जो आज ही के दिन इस धरती पर प्रकट हुई थी. इंडिया से सबसे पहले बर्थडे विशेष जाती है एक्टर एंड पॉलिटिशियन रवि किशन जी को, जिन्होंने हिंदी और भोजपुरी सिनेमा दोनों में ही अपनी जबरदस्त पहचान बना ली है और अभी फिलहाल पॉलिटिशियन बने हुए हैं. उनपे काफी मीम्स भी बनते हैं एंड ही इज प्रीटी कूल अबाउट इट. And happy birthday also to the graceful Zarina Wahab ji, singer, entrepreneur or youth icon. Ananya Birla ka bhi aaj happy birthday hai. And the legendary filmmaker Bharati Raja, jinhone Indian cinema ko unforgettable stories diye, unka bhi aaj happy birthday hai. International birthday gang mein hai David Hasselhoff. हाँ, ये वही बेवॉच वाले लाइफ गार्ड है. साथ ही कंट्री म्यूजिक स्टार लूक ब्रायन, एक्ट्रेस बिली लॉर्ड एंड एक्ट्रेस समर बिशल, ये सभी आज ही सेलिब्रेट करें अपना बर्थडे तुम्हारी तरह. तो अगर आज तुम सेलिब्रेट कर रहे हो तो केक कैलोरीज आज ऑफिशियली काउंट नहीं होती है. कल से जिम का गिल्ट जो है वो दोबारा से रख लेना अपने सर पर. लेकिन आज के दिन सिर्फ खाओ पियो ऐश करो, खुशी मनाओ, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करो. एंड ऑफकोर्स सेंड मी योर बर्थडे शाउट आउट्स इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp number hai 9033 mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: ओके जी, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग। जरा पता करने का टाइम आ चुके कि गोल्ड का रेट कहाँ पर पहुंचा है।
1: गोल्ड ट्रेडिंग है 3,990 डॉलर्स, 3,990 डॉलर पड़ रहा है। उसके साथ गोल्ड इस साल पहली बार 4,000 के मार्क के नीचे ट्रेड कर रहा है। इस करेक्शन के साथ हम चाहेंगे कि आप गोल्ड में जरूर इन्वेस्ट करें, 0% इंटरेस्ट, 0% डाउन पेमेंट के साथ। आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए 22 कैरेट गोल्ड डिजाइनर ज्वेलरी जैसे जलेबी नेकलेसेस राज ज्वेल्स के साथ आए, सेलेक्ट करें आज गोल्ड का प्राइस लॉक करें और बिना किसी हिडन फी और इंटरेस्ट के 9 इंस्टॉलमेंट 9 महीने में पैसे दें। ज्वेलरी आज आपके साथ घर ले जा सकते हैं अप्रूव होने पे। आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू
0: यू। हैव इट, गोल्ड का लेटेस्ट अपडेट ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, मेरे यानी कि प्रिसला के साथ। आप फटाफट से मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो 9033 मिर्ची इज माय नंबर, 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स पता करने का टाइम आ गया है। सबसे पहले इंडिया ने अपनी पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को हरियाणा से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये ट्रेन डीजल नहीं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलेगी और एग्जॉस्ट में सिर्फ वाटर वेपर निकलेंगे। ये टारगेट करता है ट्रैवल के तीन एस्पेक्ट्स को, क्लीनर ट्रैवल, स्मार्ट टेक्नोलॉजी एंड पोल्यूशन। नंबर टू पर इंडिया और यूके की दोस्ती का बिजनेस एडिशन भी सुपरहिट चल रहा है। इंडिया यूके ट्रेड अग्रीमेंट ने रोल आउट के पहले ही दिन इंडिया ने लगभग $140 मिलियन के गुड्स जीरो ड्यूटी पर एक्सपोर्ट किए। इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, जेम्स, ज्वेलरी, मतलब मेड इन इंडिया अब यूके शॉपिंग कार्ट्स में और भी इजीली लैंड करेगा। एंड फाइनली नंबर थ्री पर स्पोर्ट्स से, रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि लॉर्ड्स में इंग्लैंड के अगेंस्ट थर्ड ओडीआई रोहित शर्मा का इंडिया के लिए लास्ट ओडीआई हो सकता है। ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन अभी नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक सिलेक्टर्स 2027 वर्ल्ड कप को देखते हुए यंगस्टर्स जैसे यशस्वी जायसवाल को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं। And that's it for Mirchi Hour Ka 3 with me Priscilla on Mirchi Mornings. Connect karo mujhse Insta aur X par, mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Well, I'll stay tuned and stay hot.

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब हम पता करने वाले हैं कि आज हमारे सितारे क्या कह रहे हैं।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि, पैसों की टेंशन को थोड़ा वेकेशन पे भेजो। वीकेंड आ गया है, मेमोरीज बैंक बैलेंस नहीं बल्कि लोगों से बनती है। लकी कलर आज तुम्हारा है ऑरेंज, लकी नंबर है 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, रिलेशनशिप में ड्रामा कम, जूम आउट ज्यादा करो। हो सकता है कोई प्रॉब्लम उतनी बड़ी हो ही ना जितनी तुम्हें लग रही हो। लकी कलर फॉर यू इज ग्रीन, लकी नंबर इज 28। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, रिचार्ज मोड ऑन कर लो। आज खुद को परमिशन दो स्लो होने की, फोन ही नहीं बल्कि इंसान भी चार्जिंग मांगता है। लकी कलर फॉर यू इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 5। कैंसर यानी कर्क राशि, आज एम्बिशन फुल पावर में है। अगर दिल किसी गोल पर सेट हो चुका है तो यूनिवर्स भी कहेगा चैलेंज एक्सेप्टेड। लकी कलर्स फॉर यू आर सिल्वर एंड गोल्डन, लकी नंबर इज 33। लियो यानी कि सिंह राशि, माइंड की सफाई का टाइम आ चुका है। नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालो और पॉजिटिव थॉट्स को अंदर लेकर आओ। रिसाइकल बिन भी एम्प्टी करते रहना चाहिए, तुम शाइन करने के लिए ही बने हो। लकी कलर फॉर यू इज ब्राइट येलो एंड लकी नंबर इज 1। वर्गो यानी कन्या राशि, आज क्रिटिसिज्म की वॉल्यूम थोड़ी सी कम करो। हर कोई परफेक्ट नहीं होता है वरना तुम स्पेशल कैसे लगोगे। लकी कलर फॉर यू इज लाइट ब्लू, लकी नंबर इज 22। That rhymed. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दैट वॉज द एंड ऑफ राशि जोन पार्ट 1। थोड़ी सी देर में राशि जोन पार्ट 2 लेकर आऊंगी मैं, लेकिन तब तक तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स एंड जाकर मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 44। फिलहाल स्टे ट्यून एंड स्टे

0: नमस्कार, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर राशि जोन पार्ट टू।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: सबसे पहले लीब्रा यानी कि तुला राशि। हर बात पर ट्रस्ट मी सुनकर इंस्टेंटली ट्रस्ट मत कर लो, वेरीफाई फर्स्ट बिलीव लेटर। लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 18। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, दिल की बात कॉन्फिडेंटली बोलो। जो लोग ट्रूथ से अनकंफर्टेबल हैं, शायद उन्हें वही सुनना जरूरी होता है। लकी कलर फॉर यू इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 41। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, सॉफ्ट हार्ट अच्छा है लेकिन बाउंड्रीज भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आज थोड़ा सा फर्म रहना ही स्मार्ट मूव कहलाएगा। लकी कलर फॉर यू इज ऑरेंज, लकी नंबर इज 9। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, रूल बुक को थोड़ा सा साइड रखो। हर काम का एक ही फॉर्मूला नहीं होता है, कभी कभी तुम्हारा शॉर्टकट ही बेस्ट राउट हो सकता है। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 26। अक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, किसी की क्रिटिसिज्म पर गुस्सा आए तो आज गुस्सा मत करो, पहले चेक करो उसमें थोड़ी सी सच्चाई तो नहीं है। ग्रोथ भी कभी कभी एक अनकंफर्टेबल रास्ते से तुम्हें लेकर जाती है, कभी कभी वो फीडबैक के तौर पर आती है। लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 37। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस यानी कि मेन राशि, आज आइडियाज रॉकेट स्पीड से आएंगे। बस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, इसीलिए थोड़ा सा डबल चेक करना जरूरी है। और हाँ, सिर्फ एआई ही हालुसिनेट नहीं करता है, कभी कभी हमारे ओवरथिंकिंग भी ऑस्कर विनिंग इमेजिनेशन दिखा देते हैं। लकी कलर फॉर यू इज सी ग्रीन, लकी नंबर इज 22। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची राशि जोन पार्ट टू। मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

बस इसी गुड वाइब के साथ आज का मिर्ची मॉर्निंग्स यहीं पर समाप्त होता है। मेरा नाम है प्रिसिला, मैं ही तुम्हारे साथ पिछले कुछ घंटों से थी, लेकिन अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है। जाने से पहले तुम्हें ये इंपॉर्टेंट हेड्सअप देकर जाती हूँ कि अगर तुम न्यूयॉर्क या नियर बाय एरियाज में हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान आज रखना पड़ेगा। कनेडियन वाइल्ड फायर स्मोक की वजह से सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 200 से ऊपर चला गया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से विजिबिलिटी जो है वो भी काफी कम हो गई और हवा में बर्निंग वुड की स्मेल महसूस की जा सकती है। सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं बल्कि शिकागो, ग्रैंड रैपिड्स, पिट्सबर्ग एंड टोलेडो जैसे शहरों में भी एयर क्वालिटी अलर्ट्स इशू किए गए हैं। तो आज का मिनी लाइफ हैक ये है कि अगर जरूरत ना हो तो आउटडोर एक्टिविटीज को बिल्कुल लिमिट कर दो या बिल्कुल करो ही मत। स्पेशली अगर तुमको एस्मा, एलर्जीज या ब्रीदिंग इश्यूज हैं तो बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड ऑफ कोर्स पानी पीते रहो और फ्रेश एयर की जगह फ्रेश फ्रेश प्लेलिस्ट यानी कि मिर्चीदार बैंगर्स इंजॉय करते रहो। अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है तो मेरी तरफ से टाटा बाय बाय है। यू एंजॉय योर वीकेंड, खाओ पियो ऐश करो एंड इफ यू गोना मिस मी फटाफट से मुझे फॉलो कर लो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट। अकड़ी बकड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिका दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिकीरो दिकीरो दिकीरो दिकीरो दिकीरो Punjab.

0: बचपन में आपको याद है हम कैसे बड़े होने की रट लगाया करते थे कि बस हम जल्दी से बड़े हो जाएं। एक्टिंग किया करते थे कि हम कॉलेज जा रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन क्यों?
1: सारा ज़माना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. पता नहीं यार, ये हमारे अंदर क्या एक जुस्तजू थी कि हमें बड़ा होना था, बस बड़ा होना था, और हमें लगता था कि हम जब बड़े होंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। एंड नाउ जब बड़े होने के बाद इन रेट्रोस्पेक्ट मैं बचपन की अपनी इस अदा को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि भाई ऐसा क्या खराब था हमारे बचपन में जिसे फिक्स करने के लिए हम बड़ा होना चाह रहे थे। क्योंकि रियलाइजेशन तो ये है कि हमारी हाइट के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंजाइटी, स्ट्रेस एंड बिल्स एंड ईएमआईज एंड न जाने क्या क्या, वो सब कुछ बढ़ गया। लेकिन वो जो हमने फिक्स करनी थी ना चीजें, वो फिक्स करने वाली चीज हमें कहीं मिल नहीं रही है कि क्या खराब था जिसे फिक्स करने के लिए हम बड़े हुए थे। नथिंग रियली एक्चुअली।
3: और बड़े होने के बाद अब एक अलग ही जुस्तजू लगी हुई है। हम सब एक हसल में है, हम सब एक स्ट्रगल में है कि यार हम सुकून की तलाश में है। ये जो इतना हम भागम दौड़ करते हैं ना पूरे दिन की, उसके एंड में हम अपने आप को एक डायलॉग देते हैं लॉलीपॉप सा और खुद को कहते हैं ये सब जो हम कर रहे हैं ना ये एक सुकून के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो सुकून कौन सा है ना वो भी नहीं पता है। मैं यही सोच रही थी कि यार ये जो एक सुकून है जिसके लिए हम अपने पूरे दिन को बेचैन कर देते हैं, वो क्या सुकून है और वो कहाँ मिलेगा जिसके लिए हम अपने छोटे छोटे सुकून दिन भर के गायब कर देते हैं, घुमा देते हैं, उन पे चादर डाल देते हैं। कौन सा है वो सुकून, इसी तलाश में है। लेकिन इसी सुकून की तलाश में थी और मुझे गुलजार साहब की लिखी हुई चंद लाइनें मिली, और वो लाइंस कुछ यूं हैं कि एक सुकून की तलाश में न जाने कितनी बेचैनियां पाल ली, और लोग कहते हैं कि हम बड़े हो गए, हमने जिंदगी संभाल ली। चलो जी, नाउ विद दिस थॉट मिड मोहब्बत की गाड़ी को पीछे के गियर में डालते हैं, यानी कि 90 के गियर में डालते हैं। आपसे कहते हैं यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आज व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करने का कभी कभी मन ही नहीं करता यार, बट देयर वाज अ टाइम जब घर में पापा के पेजर के बजने की आवाज आती थी और हम सब देखने के लिए अपने अपने कमरों में से भाग कर निकल कर आया करते थे कि क्या मैसेज आया है।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And as a millennial, मैं बड़े शान से कहती हूँ कि हमने पेजर का आना और जाना दोनों देखा है बॉस। और हम तो कैसे पेजर की आवाज सुनकर एक्साइटेड हो जाया करते थे, क्योंकि हमारे लिए तो ये बहुत नई चीज थी यार कि ऐसा एक यंत्र जिस पर कोई भी कहीं भी बैठकर एक सिग्नल दे सकता है। ओह वाओ, कट टू आज की दुनिया जहां हम अपने व्हाट्सएप से, अपने इंस्टाग्राम से परेशान हो जाते हैं यार कि कितना मैसेजेस देखें और उनका जवाब भी दें। कभी कभी तो ना दिन भर का काम करने के बाद दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के भेजे गए मीम्स देखना भी ऐसा होता है जैसे कोई काम ही निपटा रहे हो यार कि बस ब्लू टिक कर दें, एक बहुत ही जरूरी सी स्माइली जो है वो भेज दें और काम खत्म। थोड़ा था तो सही था यार, जब तक प्यास है तो आस है वाला मामला है। बॉस जहां हमें कोई चीज पूरी मिल

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: तबू और अजय देवगन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हकीकत। उसका एक ऐसा गाना था जिसे कि हमें बचपन में सारे बड़े टोका करते थे गाने के लिए कि नहीं नहीं ये गाना नहीं गाना है, ये अच्छी बात नहीं होती है जो इस गाने में कही गई है।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और इस गाने में क्या कहा गया था यार, बस यही तो कहा गया था। लेकिन मुद्दा ये नहीं है आज के टाइम पर, ये तो हमारे बड़ों का मुद्दा हुआ करता था। मुद्दा तो ये है कि ये जो कहा गया है, ये गाया गया है, जो म्यूजिक है ना, ये ओरिजिनल नहीं है बॉस, क्योंकि ये तो कॉपी की गई है फ्रॉम एन इंग्लिश बैंड जिसका नाम था द चैम्प्स, और उनका 1958 में रिलीज हुआ ये गाना टकीला इज एक्चुअली द ओरिजिनल म्यूजिक, जहां से इस गाने की इंस्पिरेशन या कॉपी व्हाटएवर वी वांट टू से एंड व्हाटएवर वी फील अबाउट इट की गई है। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है ना कि 90s की कोई फिल्म है या कोई गाना है जो कहीं से कट कॉपी पेस्ट किया गया है, तो फॉरन डीएम करिए ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड रहिए विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: कुमार सानू और संजीवनी की आवाज में दिस गाना इज फ्रॉम द फिल्म करीब। और आपने एक कमाल बात नोटिस करी है, पूरे बचपन हमने एक चीज हमेशा सीखी है, चोरी करना बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है। और बड़े होते के साथ जो पहला काम हमने किया है ना, वो चोरी करना है। हाँ, क्योंकि जब चोरी चोरी नजरें मिली, चोरी चोरी दिल ने कहा, चोरी में ही है मजा। और एक्चुअली हमने लोगों का दिल ही तो चुराया है। तो अब बोलो, जो बचपन का ज्ञान था उसको मिट्टी पलीद नहीं कर दिया हमने?
1: सारा जमाना ऐ सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And I know, आपने सर पे हाथ रखकर बोला होगा, सारा यार अभी क्या करूं यार, कंट्रोल ही नहीं होता है। एनीवेज, अभी अपनी बातों को छोड़ती हूँ और बात को आगे बढ़ाते हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए गाड़ी जब आगे बढ़ती है तो आता है मान ना मान करो गानों की पहचान। तो बस जी, यही वो मौका है जहां पर दो गानों का मिक्स मैं आपके लिए चला देती हूं और आपको धुनों को सुनकर पहचानना होता है कि ये दो धुनें कौन से गाने की है। तो आज का जो मिक्स है वो है कुछ यूं।

बस अब आपको इतना करना है कि डीएम करना और माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा और बता देना है कि ये दोनों गाने कौन से हैं. एज सिंपल एज दैट. स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ये जो टर्म है ना, हे बेबी, आप इसको इतने मॉड्यूलेशंस में बोल सकते हो कि जज्बात और हालात दोनों बदल सकते हैं। अगर आप किसी बड़े इंसान से बात कर रहे होगे तो आप इसको कुछ इस तरीके से बोल सकते हो, हे बेबी, यानी कि दो लोगों में मोहब्बत है। और अगर कोई स्ट्रेंजर आपसे इस तरीके से कहे हे बेबी, तो बड़ा गुस्सा आ जाएगा यार। बट देन दिस फिल्म वॉज एक्चुअली मेड इन अ वेरी क्यूट वाला इमोशन, विच वॉज हे बेबी ओले ले ले ले ले।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And the film Hey Baby, which was Sajid Khan's directorial debut, well, ये film was actually a remake. 1990 में एक मलयालम मूवी बनी थी थूवल स्पर्शम, जो कि खुद एक अडेप्टेशन थी ऑफ एन अमेरिकन फिल्म थ्री मैन एंड अ बेबी। और ये जो अडेप्टेशन थी, अमेरिकन अडेप्टेशन, वो खुद एक फ्रेंच अडेप्टेशन थी ऑफ द मूवी थ्री मैन एंड अ क्रैडल। यानी कि ये फिल्म एक या दो बार नहीं, चार बार बनी है, चौथी बार हिंदी में फाइनली। बट डिड यू नो कि इस फिल्म के शूट से पहले साजिद खान ने चार डिफरेंट सेकंड हाफ्स लिए थे, चार डिफरेंट एंडिंग्स ली थी, और वो प्लान कर रहे थे कि ये सब को इस फिल्म के अंदर वो इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। थैंक गॉड कि उन्होंने इवेंचुअली आइडिया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ये फिल्म कम और कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती यार। बट इन एन इंटरव्यू ना, साजिद खान ने एक बड़ा ही क्यूट सा डिटेल दिया था, एंड ही सेड कि जब शूट हो रही थी ना, उस टाइम पर वो जो बेबी थी ना, वो रितेश देशमुख के पास हमेशा जाया करती थी, किसी और के पास जाए या ना जाए। एंड ही सेड कि यू नो, अमंग्स द थ्री एक्टर्स, यानी कि अक्षय कुमार, फरदीन खान एंड रितेश देशमुख, रितेश देशमुख के अंदर कुछ तो मेटर्नल इंस्टिंक्ट था, जिसकी वजह से द बेबी वॉज ड्रॉन टूवर्ड्स हिम, एंड दैट वॉज जस्ट नेचुरली। उसके लिए किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ा, किसी को कुछ करना नहीं पड़ा, बिकॉज उस छोटी सी बेबी से एक्टिंग तो करवा भी नहीं सकते थे। जो कुछ हो रहा था ना, वो बेबी के अकॉर्डिंग हो रहा था। बेबी के जो एक्सप्रेशंस थे, वो बेबी के टाइम पे कैप्चर किए जा रहे थे, एक्शन या कट के टाइम पर कैप्चर नहीं किए जा रहे थे। बाकी सारे एक्टर्स वर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, एंड द बेबी वॉज जस्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू हर स्क्रिप्ट एंड हर मूड। दैट इज हाउ द फिल्म वॉज शॉट विद दिस बेबी। वैसे लाइफ में भी यही होता है कि घर में एक बेबी आ जाता है ना, तो दुनिया बेबी के अकॉर्डिंग चल रही होती है, बेबी दुनिया के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा होता है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कहीं किसी ने उनको कैप्चर कर लिया था एंड नोटिस कर लिया था कि अच्छा ये तो हे बेबी वाली बेबी है जो अब पूरी की पूरी बड़ी हो चुकी है। बट हे, डिड यू नो कि हे बेबी के लिए फरदीन खान ने रेस जैसी फिल्म को ना कर दिया था, क्योंकि फरदीन खान पहले एक्टर थे जिन्हें साजिद ने साइन किया था अपनी इस फिल्म के लिए एंड ये ऑलरेडी प्लान था कि वो ये फिल्म करेंगे। इतना कि वो इतने कमिटेड थे कि उन्हें यही फिल्म करनी थी। जब उन्हें रेस फिल्म के लिए अक्षय खन्ना का रोल ऑफर किया तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। उन्होंने यही बात कही कि मैं ऑलरेडी अपनी जुबान दे चुका हूँ फॉर दिस फिल्म टू साजिद एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस फिल्म। एक तरफ जहां भाईचारे की बात हो रही है, कमिटमेंट की बात हो रही है, दूसरी तरफ सेट्स पर विद्या बालन एंड मनीष मल्होत्रा की लड़ाइयां हो रही थी। ये हुआ कि इस फिल्म की शूट के दौरान जो विद्या बालन को लुक दिया गया था उसको लेकर वो इतनी ट्रोल हुई जितना कि हमें भी पता है कि वो कितनी ट्रोल हुई। एंड सब ने यही बोला था कि ये जो लुक दिया है ना, ये बहुत ही वाहियात लग रहा है। एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट एक्चुअली द लुक वॉज नॉट गोइंग रियली वेल विद विद्या बालन। एंड इस पूरी ट्रोलिंग को लेकर विद्या बालन ने मनीष मल्होत्रा को अक्यूज किया कि ही वॉज द रीजन बिहाइंड हर बैड लुक इन द फिल्म। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ था कि विद्या बालन अपने लुक को लेकर ट्रोल हो गई थी। किस्मत कनेक्शन में भी सेम थिंग हैपेंड। सो बेबी, वॉज इट रियली द कॉस्ट्यूम डिजाइनर? आई मीन, एक्टर का भी तो कुछ से होता है ना यार। एनीवेज, हम तो आगे बढ़ते हैं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अगर एक कमरे में एक बेबी है और 10 अडल्ट्स हैं, तो दुनिया अडल्ट्स के हिसाब से नहीं चलेगी, उस बेबी के हिसाब से चलेगी। एंड द सेम थिंग हैपेंड ऑन द सेट्स ऑफ हे बेबी।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, जब इस फिल्म के लिए शूट किया जा रहा था, तो there was this very sweet and cute moment out of a lot many sweet and cute moments on the sets of Hey Baby. Well, हुआ ये कि एक हॉस्पिटल का सीन शूट हो रहा था, एंड जितना भी क्रू था, जितने भी एक्टर्स थे, सब के सब were silent। उस कमरे के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस था, because of the reason कि उस रूम के अंदर the baby was sleeping। So अक्षय, फरदीन, रितेश, ये सब के सब अपने जूते उतार कर दबे पैर अपना शॉट दे रहे थे, और ये पूरा किस्सा टोटल 8 घंटे के लिए चला, सो दैट दे कुड अवॉइड वेकिंग अप द चाइल्ड। बट मजेदारी वाली बात एक और, पता है वो जो एक डायपर वाला सीन नहीं है, जो कि बहुत फेमस हो गया था, जिसमें कि अक्षय कुमार डायपर मुंह पे लगने के बाद कहते हैं, ओ मटर वाले चावल, याइक्स, ओ माय गॉड। हमें इस सीन को देखकर एक साथ दो इमोशंस आए थे, एक तो वो याइक्स वाला, क्रिंजी वाला, और दूसरा पूरा जमाना हंसा था यार इस सीन को देखकर कि ये सीन इतना फेमस हो गया था। लेकिन ओरिजिनली ये मेसी डायपर वाला जो सीन है ना, ये फरदीन खान को करना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं कर सकते ये वाला सीन। उसके बाद अक्षय कुमार वॉलंटियर्ड, एंड देन ही सेड कि यार ये डायपर मेरे फेस के ऊपर मारो यार, ऐसा कि उन्होंने डबिंग के टाइम पर इसको इम्प्रोवाइज किया था, एंड जो वो इम्प्रोवाइजेशन था ना, दैट वाज एग्जैक्टली दिस लाइन, ओ मटर वाले चावल, ओ हो। आई थिंक ऐसा इम्प्रोवाइजेशन अक्षय कुमार के ही बस की बात थी। थैंक गॉड कि इट वाज डन बाय हिम एंड नॉट एनीवन एल्स, अदरवाइज ये सीन में इतना मजा भी नहीं आता था यार। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: डियर स्टडी लैम्प,
1: यादों को चिट्ठी।
0: आज जब एलईडी लाइट्स में बैठकर पूरे घर में दिवाली मनाते हुए तुम्हें चिट्ठी लिख रही हूँ ना, तो ख्याल ये भी आ रहा है कि हम कितने फ्लैम्बॉयंट हो गए यार। तुम कितनी ह्यूमिलिटी के साथ एग्जिस्ट किया करती थी यार, बिना पूरे घर को डिस्टर्ब किए एक कोने में चुपचाप स्टडी टेबल पर जला करती थी। बट तुमने मेरे हर एग्जाम में मेरा कितना साथ दिया यार। सब सो जाया करते थे, लेकिन जब नेक्स्ट मॉर्निंग पेपर होता तो एक रात पहले तुम मेरा साथ पूरी रात जाग कर दिया करती थी। मैं कितनी नर्वस होती थी और उसी नर्वसनेस में गुमसुम कभी कभी तो तुम्हारे बटन को टिक टॉक खुल बंद करती रहती। और मेरी इस हरकत में भी ना तुम मुझे काम डाउन करने में बड़ा काम आया करती थी। देखा जाए तो तुम्हें हमारी लाइट ऑफ दी एजुकेशनल लाइफ का टैग दे सकते हैं हम, बिकॉज तुमने लिटरली वही तो किया था। पर मुझे पता नहीं यार कि क्यों आजकल लोगों के घरों में तुम्हारा ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं होता है। तुम्हें मैंने ऑफ लेटली ज्यादातर या तो लाइब्रेरीज में देखा है या फिर एस्थेटिकली डन इंटीरियर्स वाले घरों में ही देखा है। ओह, एक और बात याद आई मुझे तुम्हारे साथ जुड़ी हुई यादों की याद में, कि मैं कैसे सर्दियों की रातों में पढ़ते पढ़ते अपना हाथ तुम्हारे बल्ब से सेंघा करती थी। थैंक्स यार मेरी डरावनी डार्क रातों में रोशनी लाने के लिए। तुमने हमेशा पढ़ाई पर प्रकाश डाला, लेकिन आज तुम्हारी यादों पर प्रकाश डालती तुम्हारी सारा। अगर आपके पास भी आपकी 90s की यादों का कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं चिट्ठी लिखूं, तो DM करें ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: राजू बन गया जेंटलमैन का ये गाना जिसे गाया कुमार सानू ने है, लिखा देव कोहली ने है, एंड इसका ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन इज बाय जतिन ललित की जोड़ी, इज कैसेट के साइड ए का चौथा गाना।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: द गाना दिल है मेरा दीवाना, ये गाना नहीं है यार, ये गाना पता है कैसा लगता है मुझे, ये गाना ख्वाब लगता है। और ये गाना हम 90s किड्स के लिए आई वुड से कि 10 साल पहले लागू होता था, बिकॉज ऑफ द रीजन कि दिस गाना हैज सो मच ऑफ इमोशंस ऑफ अ बिगिनर इन लाइफ। मतलब कहीं किसी ऑफिस के बिगिनर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जिंदगी के बिगिनिंग की बात कर रही हूँ, जहां पर हम जब शुरुआत करते हैं तो हम ख्वाबों से भरे हुए होते हैं, हमारी आंखों में हमारे जज्बातों में सिर्फ और सिर्फ ख्वाब होते हैं, और हमें नहीं पता होता है कि वो ख्वाब कैसे सच्चे होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन एक बात हमें जरूर होती है एंड दैट इज कॉन्फिडेंस कि यार दुनिया जीत लेंगे, यार जो होगा देखा जाएगा। यार आज ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है, मतलब एक बार आप घुस गए ना अपनी कॉर्पोरेट जॉब में, 10 साल रगड़म पट्टी करने के बाद आपको लगता है कि बस हो गया यार अब नहीं होगा, लेकिन एज अ बिगिनर ये जो कॉन्फिडेंस था ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था यार, एंड आई स्टिल मिस इट एक्चुअली। और इस गाने की लाइंस भी बड़ी सही है यार, कि दिल है मेरा दीवाना यारो मैं तो चला, निकला हूँ अपनी ही धुन में, लाखों उमंगे हैं मन में, एक दिन ये किस्मत का तारा चमकेगा नीले गगन में, मेरी मंजिल दूर है पर जाना जरूर है, ए दोस्तों अलविदा। ओए होए, आई एम श्योर इस गाने को सुनकर यू आर गोइंग टू बी रिमाइंडेड ऑफ योर यंगर सेल्फ, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमने भी ये गाना गाते हुए अपने दोस्तों को यही कहा है कि यारो मैं तो चला। चलो जी, विद दिस ये गाना आपके लिए लगाती भी जाती हूँ और आपसे कहती हूँ कि हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा मैं तो आपको मिल ही जाऊंगी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद जारू ओनली ऑन

0: रीना रॉय ने अर्ली 70s में जो अपनी पहली फिल्म साइन और शूट की थी वो थी डायरेक्टर बीआर इशारा की नई दुनिया नए लोग। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और इसका पहला सीन शूट करते वक्त इनको क्या दिक्कत आई थी, सुनिए एक इंटरव्यू में इन्होंने क्या शेयर किया था।
1: पहली बार कैमरा फेस किया तो वो ऐसा सीन था कि आपका बाप मर गया एंड आई जस्ट लाफ मैंने कहा कि क्या कैसे करने का एंड दे सेड ओ गॉड क्या करें अभी इसका। देन दे सेड कि अच्छा ऐसा नहीं मतलब ये हो गया वो कहते हैं ब्रेन वॉश जैसा तुम्हारा ऐसा सैड हो गया वो हो गया। आई वाज सो दिस के देखो तो बिलीव करो ना। तो उन्होंने फिर बोला ये हम नहीं करेंगे अब थोड़ा लाइट सीन लेते हैं। देन आफ्टर दैट इशारे जी ने कहा कि आई डोंट थिंक सो ये लड़की जो रेफरेंस जहाँ से भी आए बट आई डोंट थिंक सो शी कैन मेक इट इन इंडस्ट्री बिकॉज इसको तो समझ नहीं है कि एक्टिंग क्या है, ना इंस्टीट्यूट ना कुछ ना ट्रेनिंग ना कुछ।
0: एक्टिंग सीखने में बंदी को थोड़ा टाइम लग गया लेकिन कुछ चीजों में ये एकदम प्रो थी जैसे कि डांसिंग, बाइक चलाना। इन्हें बाइक चलाने का बहुत शौक था, कितनी फिल्मों में इन्होंने बाइक चलाई है।
1: मैं बाइक पे ही रहती थी, जब शॉट रेडी होता था तो मुझे एक मैसेज आता था मैम शॉट रेडी बाइक छोड़ के आ जाओ, क्योंकि इतनी अच्छी बाइक थी तो मम्मी तो घर में रखने नहीं देती थी। तो और वादा दिया है मम्मी को कि बाइक नहीं खरीदनी है तो नहीं खरीदी थी। छोटी बहन ने चला के पैर टूटवा लिया, तब से बोला कि बिल्कुल नहीं तुम्हारा देखा देखी बोली छोटी ने चलाई तो बाइक तुम खरीदोगी नहीं।
0: इनकी फिल्म सनम तेरी कसम में तो इनकी एंट्री बाइक पे होती है और उस बाइक पे इनके किरदार का नाम भी लिखा रहता है NISHA निशा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3 मिर्ची, it's hot.
0: पुरानी जीन्स विद चारू, only on मिर्ची.

0: रीना रॉय उन एक्टर्स में से एक थी जिन्होंने नए टैलेंट के साथ काम करने से कभी इनकार नहीं किया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसीलिए सुभाष कई जब अपनी डेब्यू फिल्म काली चरण के लिए उनके पास पहुँचे तब भी उन्होंने मना नहीं किया। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था।
1: I didn't have any problem. मैंने तो हमेशा राज बब्बर was new. I worked with him and they were one or two like this chapter वाले थे कि भाई इनको लेंगे तो ये problem होगा. Even अंधा कानून, then कमल हसन. So I don't have problem to work with new people. मैंने सुभाष घई के साथ as a leading काम की, वो फिल्म लगी नहीं. He was the hero. और उसके बाद I don't know what happened. वो फिल्म complete हुई नहीं हुई, we don't know anything. And then came to my mother कि मुझे direction का chance मिला है तो I would like your daughter to work in the film. उस तरीके से, और वो मेरी मम्मी के बेटे भी बने हुए थे उस जमाने।
0: वैसे काली चरण फिल्म से एक और चीज की शुरुआत हुई थी, वो थी रीना रॉय एंड शत्रुघ्न सिन्हा साहब के बीच में नजदीकियां, जो बाद में उनको काफी महंगी पड़ी बिकॉज इट ब्रोक हर हार्ट।
1: गुजर गई जो दास्तां, अभी क्या रिपीट करनी।
0: पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन

0: रीना रॉय की मोस्ट पॉपुलर ऑन स्क्रीन जोड़ी थी जीतू जी के साथ। जी मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इन्होंने कुछ 22 फिल्मों में साथ में काम किया, जिनमें 17 फिल्मों में एज रोमांटिक पेयर थे। इनमें से 12 फिल्में हिट हुई थी भाई। इनकी पहली फिल्म साथ में जो रीना रॉय जी की फर्स्ट हिट फिल्म भी थी, वो थी 1973 की जैसे को तैसा। ये फिल्म रीना जी को कैसे मिली, सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: ये एक्चुअली डबिंग थी जितेंद्र जी की, एंड वहाँ पर ये लोग वो एडिटिंग कर रहे थे कुछ मेरी वो एक फिल्म की जो लगी नहीं, तो दे वाज सम लिटिल डांस, तो दे वांटेड सम न्यू गर्ल न्यू फेस एंड ऑल दैट। उस हिसाब से जितेंद्र जी ने देखा कि ये लड़की कौन है, जस्ट फाइंड आउट, क्योंकि हमारे डबल रोल था जीतू जी का, उसके लिए एक लड़की जो दूसरे वाले हीरो के साथ है इनको ले लेंगे। उस हिसाब से आई वाज सेलेक्टेड जितेंद्र जी, वेरी नाइस मैन एंड वेरी गॉड फियरिंग एंड वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड पंचुअल, वेरी पंचुअल। So we completed very fast. वो 2-3 महीने में complete हो गई फिल्म and it was super duper hit.
0: इसी बात पे इन दोनों का इस फिल्म का गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रीना रॉय जो फिल्मों में नई नई आई थी ना, उनको एक बड़ी मुश्किल आती थी, सीरियस सीन में उनकी हंसी निकल जाती थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बार तो डायरेक्टर बी आर इशारा ने उनको एक धमकी भी दे दी थी कि अगर तुम हंसी और रोई नहीं तो फिर देखना। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में रीना जी ने क्या शेयर किया था।
1: दैट वाज इन जरूरत कि आपके पति लंगड़े हो गए, तो उनका वो हो गया, ही इज ऑन व्हीलचेयर एंड आई हैव टू रिएक्ट, और वो लंगड़े हो गए और आपको रोना है, चिल्लाकर और पैरों के पास जाना है, और मैं गई चिल्लाई, मुंह छुपा के मैं हंस रही थी, फिर मैं वो देखू विजय अरोड़ा को मैं हंस दू। उन्होंने क्या किया फिर, बोले कि अभी तुम अगर नहीं किया ना तो मैं एक चक्का लगाऊंगा तुम्हें सिगरेट का, और ही टू स्मोक, डराने के लिए नहीं, जैसे कि यू डोंट डू योर होमवर्क यू आर गोइंग टू गेट पिस्टिंग, वैसा वाला।
0: वैसे रीना जी जब नई नई फिल्मों में आई थी ना, इनको लेकर एक अफवाह भी थी।
1: शुरू में जब मैं आई थी तो वो कहते थे कि आशा पारेख की बेटी है, एंड आई हैड डन दैट जख्मी, दैट वाज ताहिर एंड नासिर हुसैन प्रोडक्शन, तो वो उस वजह से उन्होंने कहा आपको पता है अफवाहें तो होती रहती है।
0: अभी रूमर्स का तो वही है फिर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और मैं क्या कह रही थी, गाना सुन लेते हैं जख्मी फिल्म का, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: रीना रॉय जब छोटी थी तो बड़ी शरारती थी, उछलती कूदती फुदकती घूमती फिरती रहती थी बॉम्बे के बांद्रा एरिया में। वहीं पर नरगिस जी ने उनको नोटिस किया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस बारे में सुनिए रीना जी ने एक बार एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: मैं रोड पे खेल रही थी, नरगिस जी ने मुझे देखा एंड देन आफ्टर दैट दे वांटेड टू नो कि मेरा कौन सा मतलब हम कौन सी बिल्डिंग में है। तो उनके ऑफिस से कोई लोग आए, उन्होंने फिर कहा कि आपकी बेटी को फिल्मों में काम करना है बिकॉज हम इसी टाइप की लड़की देख रहे हैं फॉर द फिल्म। एंड माई मदर सेड नहीं अभी तो वो पढ़ रही है, अभी तो इतनी जल्दी हम नहीं वो करवा सकते। उसके बाद फिर मुझे पता लगा तो मैंने भूख हड़ताल कर ली, जो कि सबसे ज्यादा खाने का शौक मुझे था। तो मम्मी को बहुत टेंशन हो गई, मेरी बहन बरखा, उसने कहा कि मम्मी शौक है उसका थोड़ा कर लेने दो ना, बाद में तो पढ़ाई तो हो ही जाएगी। That is no problem.
0: Well, इसके बाद नरगिस जी ने रीना रॉय को काफी जगह पे रेफर किया। रीना रॉय फीचर हुई थी 80s की रॉकी फिल्म में, जो संजय दत्त की डेब्यू फिल्म थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

Energy. It's hot. पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

बबलू

0: रीना रॉय जी क्या बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थी? क्या उनको फिल्में देखने का शौक था? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस बारे में सुनिए उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: नहीं, मुझे फिल्में देखने का शौक था। मम्मी फिल्में मुझे नहीं दिखाती थी। जब हीरोइन रोती थी तो मैं दहाड़े मार के रोती थी, उस पे इतना जुल्म क्यों हो रहा है। और विलन से तो बहुत नफरत होती थी, मतलब नींद में भी उठ के फिर कमरे में जाती थी कि वो विलन इधर तो नहीं आ गया। दैट वाज द लाइक यू नो माय अटैचमेंट टुवर्ड्स द फिल्म। तो फिर मेरा फिल्म दिखाना बंद कर दिया था। आई न्यू दैट आई विल डू समथिंग बट आई डिडंट नो कि मैं इतनी सक्सेसफुल हो जाऊंगी। डांसिंग का भी शौक था, वो भी मुझे मेरी एनर्जी लेवल देखने के बाद मम्मी ने कहा कि इसकी एनर्जी लेवल इतना है कि खेलना कूदना तो इसको डांस में डाल दो, थक के सो जाए बस, उस वजह से डाला।
0: वेल, रीना जी ना एकदम हाइपर एक्टिव बच्चा थी। डांस भी सीखा, हॉर्स राइडिंग भी सीखी, बाइक राइडिंग भी सीखी, स्विमिंग भी सीखी, बड़ा कुछ सीख लिया इन्होंने। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: रीना रॉय जी, क्या खूबसूरत लगती थी यार वो। मिर्ची, सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और उनको कब एहसास हुआ कि वो इतनी खूबसूरत हैं? सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में इस सवाल का उन्होंने क्या जवाब दिया था।
1: एक्चुअली आई वाज नेवर इनटू लाइक एडमायरिंग माय सेल्फ एंड ऑल दैट, बिकॉज आई वाज वेरी मच लाइक एनर्जी से ऐसी भरी हुई रहती कि नाचो, एक्सरसाइज करो, स्विमिंग करो, हॉर्स राइडिंग करो, बाइक, अपने आप को देखने का। जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू, आई वाज नेवर इन लव विद माय सेल्फ, फेल्ट लाइक, बट आई वाज वेरी हार्ड क्रो। जैसे सुबह उठो तो बस प्लान बनना है, आज यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है।
0: लीजिए बताइए। अच्छा, उनसे ये भी पूछा गया था कि ऐसी क्या चीज उन्होंने की जो लोगों को लगता था कि रीना रॉय कभी नहीं करेंगी।
1: शादी, इट वाज वेरी सडन, आई वाज सो बिजी। और एक्चुअली यू नो यू नीड अ ब्रेक एट टाइम्स, यू नो आप तीन शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ शूटिंग वहाँ शूटिंग, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। फिर मैंने कहा चलो करके हम भी देखते हैं, बस मैंने कर दी।
0: वैसे बहुत से लोगों का ऐसा मानना था कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब से इनको जो हार्ट ब्रेक मिला उससे इतनी टूट गई कि कहीं ना कहीं सुकून चाहती थी, सेटल होना चाहती थी। पर देखिए उस शादी में भी उनको ज्यादा टाइम खुशी नहीं मिली। ये प्यार इसके मामलों में ना कुछ लोगों का लक ऐसा ही रह जाता है, थोड़ा हार्ड। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन

0: 70s, 80s में रीना रॉय बहुत सारे लोगों का क्रश थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन उनके ग्रोइंग अप इयर्स में उनके क्रश कौन थे, सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: यू विल रियली बी शॉक्ड बिकॉज यू नो आई यूज टू लव मनोज कुमार, आई लव हिम कि मम्मी देखो कितना देश के लिए, और मम्मी ने बोले इसने कभी देख कब जाके देखे कि क्या गाना और देन हिज फोटोग्राफ्स एंड ऑल दैट, से व्हाट अ ग्रेट मैन।
0: वैसे इनको राजेश खन्ना पे भी क्रश था और इसीलिए इनकी मम्मा ने इनका राजेश खन्ना की फिल्में देखना बंद करा दिया था।
2: क्या हुआ था कि मैंने जब मैं स्कूल जाती थी तो मैंने बंक करती थी मैं, और वहाँ पर वो उनका घर था ना, वहाँ खड़े होकर अपनी दो तीन सहेलियों के साथ कोई झलकी मिल जाए, नजर आ जाए, नजर आ जाए, वो उसके वजह से।
0: वैसे फिल्मों में काम करते करते इनको जब कोई एक्टर अच्छा लगता था तो उसको वो कैसे रीच आउट करती थी?
1: हमारे जमाने में वी कुडन अप्रोच अ पड़ोसी, सिस्टम वाज वेरी डिफरेंट। इफ यू यूज्ड टू लाइक समबडी आल्सो, हमारी कुर्सी अलग, वो कुर्सी अलग, और मदर बीच में ऑलवेज ऑलवेज यू नो व्हेन यू आर ग्रोइंग यू लाइक एवरीबॉडी, जो भी अच्छा हैंडसम हीरो मम्मा सब प्यारा है, वो कितना क्यूट सब कर।
0: दिस वुमन वाज फायर क्रैकर भाई। पुरानी जींस पर मैं हूं चारू आपके साथ। आप

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: रीना रॉय के फेवरेट को एक्टर वैसे तो जितेंद्र साहब थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बट वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट राजेश खन्ना साहब की करती थी। सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: राजेश खन्ना वाज वेरी वेरी नाइस पर्सन, दिल के बहुत अच्छे, लोगों के लिए करना, आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प करना, बट नेवर शोइंग ऑफ साइड व्हाटएवर यू नो ही यूज्ड टू डू फॉर पुअर पीपल एंड ऑल दैट। राजेश खन्ना के लिए मैं इससे कहना चाहूंगी क्योंकि ही वाज लाइक अ वेरी गुड एडवाइजर टू मी एंड like a elderly brother I treated him. He used to come to my house. My mother always used to say the vyah ho jaye bas iske bhi shaadi ke liye uske piche padho ke ho jaye, like us kisam ka rishta. Very good soul, very good hearted.
0: Oh, वैसे रीना रॉय ना बहुत शरारती थी, लेकिन वो कौन सा एक्टर था जो उनसे भी ज्यादा शरारती था?
1: कमल हसन था, वेरी वेरी नॉटी। मतलब ये कि हम लोग की वो सनम तेरी कसम जो फिल्म थी उसके अंदर, बस के अंदर तो कभी किसी के बाल में च्युइंगम लगा देना, कभी कुछ कर देना, और फिर रात को रूम के बाहर कोई गेटअप बदल के आकर कोई और ही भूत बन के डराना एंड ऑल दैट, और अचानक दरवाजा खोलो तो एक निगरो आदमी दरवाजे बाइक में आया मिलने के लिए।
0: सोच के ही मजा आ रहा है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची। पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: दी ओजी नागिन, आपको पता है कौन है? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। रीना रॉय जी की करियर की माइलस्टोन फिल्म नागिन, ये फिल्म उनको कैसे मिली सुनिए एक बार एक टीवी शो में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: नागिन एक्चुअली क्या हुआ, सारी हीरोइनों ने रिफ्यूज कर दिया था। दे वेंट टू रेखा जी, दे वेंट टू आशा पारेख, सो मेनी हीरोइंस उस जमाने की जो बड़ी हीरोइंस थी। तो देन मेरे पास आए क्योंकि मैं थोड़ा डांसिंग वांसिंग अच्छा कर रही थी, तो मेरी माँ ने भी कहा है तू बंदियां नू मार रही है, क्यों कर रही है। मैंने कहा नहीं मम्मी, मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगा है, थोड़ा डिफरेंट है, मैं जरूर करूंगी। उस हिसाब से आई वॉज सिलेक्टेड फॉर दैट फिल्म।
0: और ये नागिन का रोल निभाते हुए उनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई थी?
2: बिकॉज उस वक्त यू नो ग्लास के कॉन्टेक्ट लेंस होते थे, वी यूज्ड नॉट हैव दोस सॉफ्ट वन। और नागिन का ये रोल था कि आई एम, जहां पर भी मैं खड़ी रहती थी आंधी तूफान, पत्ते उड़ रहे, मट्टी उड़ रही, एंड दैट यूज टू डैमेज माई आईज, फिर निकालो फिर साफ करो आंख, फिर रियली वी वर्क वेरी हार्ड।
0: अच्छा, इस फिल्म के बाद ना लोग उनसे डरने लग गए थे?
1: हाँ बहुत डरते थे, बहुत बहुत। नहीं शूटिंग पे जाते थे पहले तो क्राउड यूं आता था, और आफ्टर नागिन जहाँ मैं गाड़ी से पैर निकाल के खड़ी रही, खट खट खट खट खट खट, आ गई ऐसा होता था,
0: आ गई अभी डस लेगी। चलिए इस फिल्म का ये सुपरहिट आइकॉनिक सॉन्ग सुनते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: रीना रॉय जब नई नई फिल्मों में आई थी ना, तो टॉम बॉय, सुपर एनर्जेटिक, गूफ अप क्वीन थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और इनके साथ ना एक और चीज हो जाती थी, सीरियस सिचुएशन में इनकी हंसी निकल जाती थी। अपनी पहली फिल्म के एक सीन शूट का उन्होंने क्या किस्सा शेयर किया था एक इंटरव्यू में, सुनिए।
1: दैट वाज अ नई दुनिया नए लोग, एक कोई पहाड़ था बैंगलोर में, पूरा यूनिट सुबह से वो लोग चढ़े एंड आई थिंक सो 2:30-3 बजे तक दे वो देयर, कैमरा सेट एंड एवरीथिंग सेट, और हीरो और मैं हम ऐसे बैठे हुए, और मुझे बोला गया कि देखो ट्रेन, हम वो शॉट ले रहे हैं, ट्रेन जा रही है और आपका बैग है और हीरो का भी बैग है, अगर लाइन भूल भी गए तो कुछ बोलना मत, सब बैठे रहना दोनों, ट्रेन पीछे से जा रही, लाइक वी बोथ आर सिटिंग, अभी चलो ट्रेन आ रही आ रही आ रही, सब परेशान, अभी तक ट्रेन नहीं आई, और फाइनली ट्रेन आ गई, तो उसमें दो लाइन मुझे बोलनी थी, दो लाइन उन्होंने बोलनी थी, वो हीरो ने बोल दिया, जहाँ मेरा वक्त आया, इतना ट्रेन ट्रेन ट्रेन तो मैं लाइने भूल गई, और फिर डायरेक्टर की देखी लाइन भूल गई मैं, तो मैं हंस दी, इट वाज सो एम्बैरेसिंग। डायरेक्टर ने अपना चाय का ग्लास फेंका और खाना नहीं खाया उन्होंने।
0: भाई ये अर्ली 70s की बात है, ये 15 साल की थी जब इनकी पहली फिल्म आई थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मैं जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Charu, only on Mirchi.

0: रीना रॉय जब छोटी थी तो कैसे थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक इंटरव्यू में इस बारे में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: स्कूल में आई वॉज वेरी नॉटी और मुझे वैसे भी बचपन से खेलने का बहुत शौक था। साइकिलिंग में करती थी और मम्मी ने साइकिल हमको दिला के नहीं दी थी, तो वी यूज्ड टू पे मनी। हमारे एरिया में एक छोटा सा गैराज था, रेंट पर साइकिल में लेती थी जो पॉकेट एक्सपेंस मिलता था, और फिर पूरा दिन साइकिल चलाना और कभी कभी स्कूल बंक भी कर देना, मेरी दो तीन सहेलियों को एक को पीछे बिठाना एक को आगे बिठाना। और उसी गली में हमारी कुछ बड़े बड़े पुराने झाड़ थे, पेरू के, इमली के, वो सब चीजें मैं करती और पीछे माली पीछे भागना एंड ऑल दैट। बहुत बहुत नॉटी, लिटरली इट वाज लाइक आई हैड अ टीम ऑफ गर्ल्स, गुंडे टाइप, यू नो। आई थिंक सो माय मदर वाज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, आई गॉट इट फ्रॉम माय मदर साइड, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत डेयरिंग थी, अब तो है नहीं, तो वो सारे जो उनकी क्वालिटीज है वो मुझ में है। जो भी उन हमारे रिश्तेदार आते तो दे से वी रिमेम्बर योर मदर व्हेन वी सी यू, यू नो।
0: That's so sweet. पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
2: श्रुति, श्रुति, श्रुति।
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, और भाई ये चार लोग हमारी जिंदगी में जितना भूचाल मचा चुके हैं, अब उनको चुप कराने की बारी है। आई मीन उनकी नहीं सुननी है यार। हमेशा हमें बोला जाता है कि अरे अरे ये चार लोग क्या कहेंगे बेटा, इस तरीके से हरकतें नहीं रखनी चाहिए अपनी। नहीं भाई, आप जैसे हैं वैसे ठीक हैं। आपकी चॉइसेस जरूरी नहीं है कि सामने वाले की चॉइसेस से अलाइन करे ही करे। एंड दिस इज नॉट व्हाट यू आर हियर टू लिव फॉर। मतलब दूसरों को प्लीज करना ही आपका मोटिव तो नहीं है ना जिंदगी का। कई बार हुआ है, बहुत सारी फिल्में ऐसी मुझे पसंद आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, तो इसके बारे में अगर मैं पब्लिकली बात करूँ तो बहुत सारे लोग मुझे जज कर लेंगे। बट मैंने सोचा कि आज ये सारी जजमेंट को ना हम कहीं और भेजेंगे। इफ यू नो व्हाट आई मीन। फिलहाल इस जजमेंट फ्री सोच के साथ करते हैं इस शो की शुरुआत। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। ये इंसान नहीं मानने वाला, अहमद खान की बात कर रही हूँ, क्योंकि सरजी ने शायद से कोरियोग्राफी छोड़ दी है और डायरेक्शन का ही सिलसिला शुरू कर दिया है। अभी उनकी फिल्म आई थी वेलकम टू द जंगल, जो पता नहीं कैसे इतनी कमाई कर गई है। आई हेटेड द मूवी, बट उन्होंने एक बार फिर से ऑफिशियली कंफर्म किया है अपना अगला प्रोजेक्ट, विच इज गोइंग टू बी अ हाई कॉन्सेप्ट जॉम्बी कॉमेडी, जिसमें वो टाइगर श्रॉफ और शनाया कपूर का कॉम्बो लेकर आ रहे हैं। मूवी को प्रोड्यूस करेंगे फिरोज नाडियाडवाला, एंड इट इज गोइंग टू बी अ यूनिक फिल्म जो प्रॉमिस करेगी वाइल्ड मिक्स ऑफ लाफ आउट लाउड कॉमेडी एंड हाई ऑक्टेन एक्शन। बस हाथ जोड़ के अहमद खान से विनती करना चाहती हूँ कि वो नॉस्टैल्जिया वाली कॉमेडी मत लेकर आइएगा, क्योंकि उससे ऊपर उठने की अब बारी आ चुकी है। एंड टू शनाया कपूर, दीदी ये क्रोकोडाइल्स और ज़ॉम्बीज़, इनसे हटके भी कोई फिल्म करेंगी आप? द मच सेलिब्रेटेड सिंगर अरिजीत सिंह अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करने वाले हैं। हाँ जी, कुछ टाइम पहले से ही इस चीज को लेकर काफी स्पेकुलेशंस चल रही थी, एंड नाउ न्यू रिपोर्ट्स सजेस्ट कि इस फिल्म में उनके ही साहबजादे अपना एक्टिंग डेब्यू भी करेंगे अलॉन्ग साइड नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शौरा। ऑल्दो इस चीज को लेकर कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आई है, बट जैसे ही पता चलेगा आपको तो जरूर बताऊंगी यार। एक्टर प्रोड्यूसर नानी और राघव जुएल की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड एक्शन ड्रामा फिल्म द पैराडाइज पोस्टपोन हो चुकी है। पहले ये फिल्म 21 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, बट नाउ रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट इट इज गोना हिट द थिएटर्स ऑन 24th of September। एक्चुअली इस फिल्म की अबाउट 30-35 डेज की शूटिंग ना बची हुई है, और ये सारी चीजें जैसे ही ऑन ट्रैक होंगी तो ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन भी आ जाएगा। बाकी तो अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।